103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के बैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026। 5:58:30 हुए हैं, हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। मंगलमय प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 6 बजने वाले हैं, समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

किसी का भी उदय एकदम से नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है।

आज बस इतना ही। अब सुनिए एक और भक्ति में प्रस्तुति मानस गान। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल। संगीत सतीश भाटिया का है।

गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति की मीमांसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

0: देशगान अभी आपने सुना। वक्त हुआ है FM न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार परिवार को स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा और लोग पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किए गए युवा संगम कार्यक्रम के तहत NIT पुडुचेरी के 48 छात्रों और फैकल्टी समन्वयकों का एक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिल रही है। इस बीच राज्यपाल ने कांगड़ा जिला के राजकीय प्राथमिक स्कूल गुजरेड़ा का दौरा कर बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देशभर में 6ठा स्थान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें से 6ठे स्थान पर पहुँच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जिला परिषद चुनाव के भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले वर्ष आपदा के दौरान सड़कों पर गिरे मलबे को हटाने में भी नाकाम रही और ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसें अभी भी बंद है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला।
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगा हर्ट्स पर आप हैं एफएम शिमला के साथ, सात बजने वाले हैं, समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधान

0: मंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के

0: और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक ओला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए चिंतन।

ये विचारधारा जितनी प्रगाढ़ और लगातार होगी, चित्त विक्षेपकारी वृत्तियां जितने ही शांत होंगी, उतना ही ये संयोग तेल धारा के समान अविच्छिन्न होगा। इसे ही ध्यान कहते हैं। यही ध्यान और भी प्रगाढ़ होने पर ध्येय वस्तु के साथ मन का एकीकरण हो जाता है, वो तदाकार हो जाता है। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। उसी समय स्वस्वरूप की पूर्ण अनुभूति होती है, इष्ट दर्शन या भगवत प्राप्ति होती है। एक दुखनी ब्राह्मणी के छोटे से लड़के गोपाल को हर दिन एक जंगल से होकर अकेले पाठशाला जाना पड़ता था। उसे बड़ा डर लगता था, इसलिए मां से कहने पर मां ने कहा, क्यों बेटा, डर की क्या बात है? वन में तुम्हारे बड़े भाई मधुसूदन हैं, उनको पुकारते ही वो आ जाएंगे। सरल हृदय बालक ने उसी पर विश्वास कर लिया और वन में डर लगते ही कहां हो दादा मधुसूदन कहकर रोने लगता। उसी समय वन के भीतर से एक सौम्य दर्शन छोटा सा लड़का बाहर आकर कहता, मैं तो यही हूं, क्या डर है? और उसके साथ बातचीत करते करते उसे जंगल के पार कराता। कुछ दिन बाद पाठशाला के शिक्षक महाशय की मां के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सब पढ़ने वाले लड़के, जिनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, तरह तरह की सामग्री ले आए, पर गोपाल की मां के पास देने लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए वो उदास होकर जा रहा था। देखकर कारण पूछने पर मधुसूदन दादा ने उसे एक छोटा सा दूध से भरा पात्र देकर कहा, तुम ये दे देना। गोपाल जब वो देने गया तो गुरुजी ने क्रुद्ध होकर उसे खूब धमकाया, पर ज्यों ही बर्तन खाली करने गए तो वो तुरंत ही पुनः भर जाता। ये देखकर गुरुजी अवाक रह गए। गोपाल के मुंह से सब भाल सुनकर उनके साथ मधुसूदन दादा को देखने के लिए उसके साथ वन में जाकर उन्हें पुकारने को कहा। गोपाल के वैसा करने पर आकाशवाणी हुई, तुम्हारे सरल विश्वास के कारण तुम मेरा दर्शन पाते हो, पर तुम्हारे गुरुजी का मन कलुषित है, अतः वे दर्शन के अधिकारी नहीं है। भगवान को जो सरल विश्वास के साथ अंतःकरण पूर्वक पुकारता है, उन्हें छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता, वही उन्हें पाता है, और उन्हें पाकर फिर उसे और कुछ चाहने या पाने को रह ही नहीं जाता है। जो इहलौकिक और परलौकिक सुखों के लिए उन्हें पुकारते हैं या उनसे ऐहिक वस्तु चाहते हैं, उनकी दया या इच्छा होने से ये तो उसे मिल सकती है, पर वो उन्हें नहीं प्राप्त कर सकता। काष्ठ की अंतर्निहित अग्नि जैसे घर्षण द्वारा, दूध का मक्खन जैसे मंथन के द्वारा, तिल का तेल जैसे पेरने से, मिट्टी के नीचे का जल जैसे खोदने से प्राप्त होता है, उसी तरह जीव के हृदय गुहा में निहित उसका स्वरूप जो परमात्मा है, वो भी प्राणपण पूर्वक तपस्या और एकाग्रता से प्राप्त होता है। ईश्वर प्राप्ति से ही बालक गोपाल के दुग्ध पात्र के समान स्वयं का परमार्थ भंडार अक्षय हो जाता है। उससे कोई कितना ही ले ले, किसी को कितना ही क्यों ना देते रहो, वो सदा पूर्ण रहता है, कम या ज्यादा नहीं होता है।

डॉक्टर हुकुम शर्मा की आवाज़ में अभी आपने सुना चिंतन। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं आज एफएम शिमला पर आप कौन कौन से कार्यक्रम किस वक्त सुन सकते हैं। अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग शिमला। एफएम न्यूज हेडलाइन 7:57, 8:30 और 9:57 पर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, रात 8:45 पर समाचार।

संध्या 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और रात 9 बजे न्यूज एट 9। हिंदी समाचार 12 बजे, 1 बजे, दोपहर 2:15 पर और शाम 11 बजे। इंग्लिश न्यूज 12:05 पर, 1:05, शाम 7:05 और रात 11:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रादेशिक समाचार प्रातः 9:20 पर, दिन में 11 बजे, 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। हिमाचली लोकगीत 8:32 पर आप सुनते हैं लोक संगीत, 11:30 पर पहाड़ी संगीत और 2:30 पर शिखरों के स्वर।

आज वीरवार है और आज प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर। फिल्म संगीत का समय रहेगा प्रातः 9:00, 12:10 पर, 1:10 पर, रात 8:30 पर।

0: 12:20 पर समय रहता है महिला सम्मेलन कार्यक्रम का, दिन में 3:30 पर युववाणी कार्यक्रम। आज 4:00 आप सुनते हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम 5:00 से लेकर शाम 7:05 तक। 7:10 पर किसान और बागवान भाई बहन सुनते हैं अपना कार्यक्रम कृषि जगत। 9:15 पर एक फिल्म से 9:30 पर दिल की आवाज भी सुन। 10:00 लुत्फ उठाइए गजलों का। तो ये थी जानकारी आज FM शिमला पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
2: हर खुशी अब लगे नमी,
1: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 7:15 हो चुके हैं और ये वक्त है गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का। मैं हूं आपके साथ ऋचा शर्मा।

हर दिन की शुरुआत सुविचार के साथ। कहा भी जाता है कि दिन पॉजिटिविटी के साथ अगर शुरू किया जाए तो सारा दिन ही अच्छे से गुजरता है। अगर संसार को देखने वाला मन ही अशांत, भयभीत और अहंकार से भरा हो तो सबसे सुंदर परिस्थितियां भी अधूरी लगने लगती हैं। जीवन की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इनका कोई सिलेबस और टाइम नहीं होता। इन्हें संभालने के लिए, या हम यूं कहें इनका सामना करने के लिए, हमें ज़रूरत होती है धैर्य की।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: अस्वस्थताएं तीन प्रकार की होती हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक अस्वस्थता टॉक्सिक कंडीशंस, संक्रामक रोगों, एक्सीडेंट्स के कारण होती है। मानसिक अस्वस्थता डर, चिंता, गुस्सा और भावनात्मक विकारों से होती है। आत्मा की अस्वस्थता मनुष्य को भगवान के साथ उसके संबंध का ज्ञान ना होने के कारण होती है। अज्ञान ही सबसे बड़ा रोग है। जब कोई अज्ञान को हटा देता है तो वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों को भी हटा देता है।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: प्रकृतिक स्वाभाविक रूप से शरीर की अस्वस्थता के कारणों को हटाने का प्रयास करती है। जब आंख में धूल चली जाती है तो हम अपने आप आंख को झपका झपका कर धूल को निकाल देते हैं। जब धूल नाक में चली जाती है तो हम छींक देते हैं। जब कोई ना खाने योग्य वस्तु हम खा लेते हैं तो हमें उल्टी हो जाती है। जब हमारी इंटरनल बॉडी पर कोई बीमारी आती है तो प्रकृति कई साधन उपलब्ध करवा देती है, जिसका यूज़ करने से हम अपनी सुरक्षा कर लेते हैं।

आज है 21 मई और हर साल 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। पहले हर साल 15 दिवस दिसंबर को यह दिन मनाया जाता था, लेकिन अब 21 मई को मनाया जाता है। दरअसल अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन का सीजन मई में ही शुरू हो जाता है। चाय उत्पादन और प्रसंस्करण विकासशील देशों में लाखों परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है और अनेक परिवारों के निर्वाह का मुख्य साधन भी। पानी के बाद चाय दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय है। भारत में तो चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि लोगों के जज्बात और मेहमान नवाजी का भी एक अभिन्न अंग है।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: लंबे समय तक तनाव में रहना शरीर की उम्र को तेजी से बढ़ाता है और हमारी स्किन, दिल और दिमाग तीनों पर इसका बुरा असर पड़ता है। ध्यान, योग, प्राणायाम, माइंडफुलनेस से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीके हैं जो तनाव हार्मोन को कम करते हैं। इससे मूड बेहतर होता है, नींद गहरी आती है और चिंताओं का बोझ भी हल्का महसूस होता है। तनाव प्रबंधन न केवल मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है बल्कि असमय बुढ़ापा, बाल झड़ना, इन समस्याओं को भी रोकता है। रोज 10 या 15 मिनट का सचेतन विराम हमारी पूरी जीवन शैली को बदल सकता है।

0: आप क्या क्या सुन सकते हैं और किस वक्त?
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण।
0: आज है वीरवार और आज 8:45 पर आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, जिसका विषय है क्षय रोग, और बात करेंगे विनीत कुमार से सपना ठाकुर की। चार बजे का समय रहेगा संदेश टू सोल्जर्स का, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सात 7:10 पर किसान और बागवान भाई बहन सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम। 9:15 पर एक फिल्म से और 9:30 पर दिल की आवाज भी सुन। रात 10 आप लुत्फ उठाते हैं गजलों का। मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ, वक्त हुआ है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
2: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। राज्य सरकार ने अदालतों से जुड़े मामलों को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिन मामलों में अदालत के आदेशों के कारण सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ रहा है या भविष्य में ऐसे ही मामलों पर असर पड़ने की संभावना हो, उन्हें सीधे वित्त विभाग को नहीं भेजा जाएगा। ऐसे सभी प्रस्ताव पहले मुख्यमंत्री के ध्यान में लाना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री की जानकारी में मामला आने के बाद ही वित्त विभाग उस पर आगे कार्यवाही करेगा। नगर निगम शिमला ने एस्मा के बावजूद हड़ताल पर गए सहब यूनियन के 41 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। बार बार चेतावनी और बातचीत के बाद भी इन कर्मचारियों ने नौकरी पर आना उचित नहीं समझा, लिहाजा निगम आयुक्त ने 41 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है, जबकि अन्यों को जल्द से जल्द नौकरी ज्वाइन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि सहब सोसाइटी के कर्मचारी निगम प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को न माने जाने के विरोध में पिछले काफी समय से हड़ताल पर है, जिसकी वजह से लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कल से 2 शिक्षा व करियर मार्गदर्शन मेला शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों व अभिभावकों को उच्च शिक्षा, करियर विकल्पों और विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में घोषित हुए 10वीं व जमा 2 कक्षा के परिणामों में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा, आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: पर आप एफएम शिमला के साथ 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज

0: कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री

0: शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
0: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश

0: देश पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक, भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations.

0: वेव की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की शिमला इकाई ने शिमला में भ्रष्टाचार निवारण को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सीबीआई के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में आम लोगों की भूमिका को अहम बताया और सभी से रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना तुरंत विभाग को देने का आग्रह किया। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां की जा रही है। राज्य में 131 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 42 पंचायतें शिमला जिला की है। प्रदेश भर में 176 पंचायत प्रधानों का चुनाव निर्विरोध हुआ है और इनमें से सबसे अधिक 51 पंचायत प्रधान शिमला जिला के हैं। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप एफएम शिमला के साथ, वक्त हुआ है लोक संगीत का। राज प्रभाकर की आवाज में कार्यक्रम का ये लोकगीत।

0: लोक संगीत में अभी बस इतना ही, 8:45 हुए हैं। FM शिमला पर अब सुनिए रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग विषय पर डॉक्टर विनीत कुमार की सपना ठाकुर से बातचीत।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। भारत में टीबी अभी भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सही समय पर पहचान और जांच की जाए तो इसका इलाज संभव है। तो आज हम जानेंगे टीबी के बारे में, क्या इसका इलाज है और क्या इसका बचाव है, ये सब हम जानेंगे अपने विशेषज्ञ से। आज आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विनीत कुमार लखनपाल, आप जिला क्षय रोग अधिकारी शिमला हैं। डॉक्टर विनीत, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर विनीत, सबसे पहले हम इस बात पर ही आते हैं कि टीबी है क्या।
2: टीबी जो है वो एक ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, और हिंदी में इसको क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ये एक कीटाणु होता है जो

0: हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है, जिसमें जो है वो हमारे फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसके कारण जो है वो बहुत ही लोग जो हैं वो हमारे, चाहे विश्व की बात करें और भारत की बात करें, हिमाचल की बात करें, बहुत से केसेस जो हैं वो पुराने टाइम से आते थे और अभी जो है वो उसका नंबर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो हमारे हिमाचल की बात करें या भारत की बात करें, नंबर काफ़ी है और जो है वो ये बीमारी लोगों में आ रही है अभी भी।
1: डॉक्टर विनीत, तो टीवी फैलती कैसे है, क्या ये छूने से भी फैलती है?
0: टीबी के बारे में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि टीबी जो है वो छूने से या किसी से हाथ मिलाने से फैलती है। टीबी के फैलने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है जब कोई टीबी का रोगी जो है वो खांसता है या छींकता है, तो उसके जो खांसने और छींकने में टीबी के कीटाणु जो है वो हवा में जाते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति जिसको टीबी नहीं है वो उसको अपने सांस के द्वारा फेफड़ों में वो चला जाता है, उसको जो है वो टीबी होने की संभावना होती है। लेकिन इसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब किसी के शरीर में टीबी का कीटाणु जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको टीबी हो ही जाएगा। ये जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं वो कितनी है।
1: डॉक्टर विनीत, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि भारत में ये स्थिति है, तो क्या शिमला में भी अभी ऐसी स्थिति है कि टीबी के केसेस आ रहे हैं?
0: अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हर साल जो है वो 1 करोड़ के आसपास जो है वो टीबी के केसेस हर वर्ष आते हैं। भारतवर्ष में उसके 25% जो है वो 25 या 26 लाख के आसपास केसेस हर साल, और हिमाचल में जो है वो 15,000 के केसेस जो है वो प्रतिवर्ष, और अगर हम शिमला की बात करें तो 1400 से 1500 के आसपास जो केसेस जो है वो हर वर्ष अभी भी जो है वो आ रहे हैं।
1: डॉक्टर विनीत, क्या कारण क्या है कि इतना जागरूकता के बावजूद भी टीबी का कोई ना कोई केस हमारे सामने आ जाता है, क्या वजह रहती है?
0: जैसे मैंने पहले भी बताया कि टीबी जो है वो उन्हीं लोगों को होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो अगर हम बात करें कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता किन किन लोगों में कम होती है, वो है हमारे जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल का यूज़ करते हैं, या आजकल जो है वो जैसे चिट्टा और अलग अलग जो है वो एडिक्शंस जो हैं वो लोगों में आ रही हैं। उसके अलावा जो है वो आजकल डायबिटीज़ जो है वो लोगों में, शुगर जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन हो गई, ये बीमारियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये जो बीमारियाँ हैं ये भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे घरों में जो चूल्हा जलता है उसका जो धुआं होता है उसके कारण भी जो है वो हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम रहती
1: हो जाती है।
0: तो और साथ में जो है वो एक ऐसा कारण है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं भी है, जो बढ़ती हुई उम्र, 60 साल से ज़्यादा जो है वो व्यक्तियों की जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
1: जी, बिल्कुल।
0: उसके कारण जो है वो टीबी के केसेस जो है वो आज भी आ रहे हैं हमारे, लेकिन जो है वो सरकार जो है वो काफ़ी प्रयास कर रही है इन केसेस को कम करने के लिए।
1: ये तो हुई किन लोगों में अधिक संभावना रहती है, अब बात आती है कि इसकी सही पहचान कैसे की जाए, इसके लक्षण क्या रहते हैं ताकि एक आम व्यक्ति इसे जान सके।
0: टीबी के लक्षणों के बारे में पता होना जो है वो आम जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीबी के लक्षण जल्दी से जल्दी पहचाने जाएं और फिर टीबी के मरीज को जल्दी से दवाई दे दी जाए तो वो जो है वो फिर उसको समाज में नहीं फैलाता है। तो जो टीबी के जो मुख्यतः लक्षण हैं, तो अगर हम बात करें कि मुख्यतः जो टीबी जो है वो सिर्फ फेफड़ों का होता है, तो फेफड़ों के जो टीबी के लक्षण हैं वो हैं जी, अगर किसी को 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी रहती है, खांसी में जो है वो बलगम में साथ में खून आ रहा हो, साथ में बुखार, और बुखार भी जो है वो जो रात के समय जो है वो आता है और पसीना देके बुखार आता है, भूख कम हो जाती है, उसके बाद वजन कम होता है, छाती में दर्द रहती है, ये तो थे आपके जो जो फेफड़ों का टीबी होता है उसके लक्षण। इसके अलावा टीबी जो है वो कई बार बहुत लोग मेरे से भी पूछते हैं कि टीबी कौन कौन से ऑर्गन का हो सकता है,
1: कौन कौन से अंग को प्रभावित करता है।
0: तो हम इसका जवाब इसलिए देते हैं कि टीबी जो है वो सिर्फ 2 ही अंग हैं जिनको प्रभावित नहीं करता है, उसके अलावा सारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। वो 2 अंग हैं हमारे बाल और नाखून, जिनमें जो है वो खून की सप्लाई नहीं होती। उसके अलावा टीबी जो है वो फेफड़ों से लेकर ब्रेन, लीवर, इंटेस्टाइन हो गया, गर्भाशय का भी होता है हमारे पास, बोन्स का होता है, स्किन का होता है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो उनको टीबी अफेक्ट करता है। और उसके लक्षण जो हैं वो बुखार जो है वो तो रहेगा आदमी में, उसकी भूख कम रहेगी, उसका वजन कम होगा, लेकिन अगर ब्रेन का टीबी होगा तो उसको चक्कर आएंगे, अगर उसको जो है वो पेट का टीबी होगा तो उसको जो है वो दस्त या उल्टी की शिकायत रहेगी। तो इसका जो है वो अल्टीमेटली यही है कि अगर आपको ये लक्षण लगते हैं तो जल्दी से इसकी टेस्टिंग करवाएं, और ताकि जो है वो आपको उस पर ट्रीटमेंट पे डालें, और जो है वो टीबी अब तो 100% जो है वो, अगर कोई पेशेंट जो है वो दवाई टाइम टू टाइम लेता है, अपनी डाइट का ध्यान रखता है, तो 100% क्यूरेबल जो है वो ये बीमारी।
1: तो क्या जान

0: क्या शुरू की जाती है, एक्सरे होता है और क्या किया जाता है?
1: टीबी की जो है वो जो फेफड़ों की टीबी में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो हम बलगम की जांच करते हैं
0: जी।
1: बलगम की जांच जो है वो हमारे, अगर हम शिमला की बात करें तो सारे के सारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे जो है वो टीबी की टेस्टिंग की सरकार के द्वारा ऐसी मशीनें लैब में रखी गई हैं जो आपको एम्स दिल्ली या फिर पीजीआई चंडीगढ़ में जो मशीन्स हैं वही आपको मशीनें जो हैं वो चिड़गांव, नेरवा, कुफ्वी ऐसे ऐसे एरियाज में भी मिलेंगी।
0: यानी सुविधा उपलब्ध है।
1: सुविधा
0: तो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, तो इलाज क्या रहता है
1: टीबी की
0: जांच के बाद?
1: हाँ जी, जैसे ही जांच होती है, और जांच में सबसे लोगों के जो पता होना चाहिए कि ये जो बलगम का टेस्ट है लोगों को जो है वो हॉस्पिटल तक आने की जरूरत भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है वो आशा वर्कर हमारी जो हर गांव में होती हैं वो लोगों के घर से जो है वो सैंपल लेबोरेटरी तक लेके जाती
0: जी।
1: उसके बाद अगर जो भी मरीज पॉजिटिव आता है तो उसकी जो दवाइयां हैं और ये जो जांच है जो जिसकी बाजार में कॉस्ट जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये टेस्ट बलगम का टेस्ट होता है पूरे सरकारी सिस्टम में जो ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी तरह जो है जब मरीज जो है वो ट्रीटमेंट पे डलता है मुख्यतः इसकी 6 महीने के आसपास जो है वो ट्रीटमेंट रहती है हमारी, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है पेशेंट्स के लिए। तो उसके बाद पेशेंट जो है वो इलाज के दौरान भी हम जो है वो उनके बीच बीच में जो है वो हर मंथली जो है वो टेस्टिंग करते हैं।
0: डॉक्टर विनीत, क्या ये देखा जाता है कि जो आपकी आशा वर्कर है ये बिल्कुल ध्यान देती है कि मरीज जो है टीवी से बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए? जैसे आपने कहा कि घर घर जाकर उनके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि टीवी से मरीज बिल्कुल ठीक हो गया, या कुछ मरीज जो है जैसे बीच में दवा छोड़ देते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते और लोगों को फैला देते हैं, तो कैसे पता करते हैं?
1: हमारे पास जो है वो जो टीबी की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो उसकी दवाई भी जो है जिस तरह सैंपल आशा वर्कर लाती है उसी तरह दवाई भी आशा वर्कर घर छोड़ती है जाके। और जो है वो हमारे पास अगर बात करें जिसको ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बोलते हैं हम, तो जिला शिमला में हमारे पास 91% के आसपास रेट आती है। 5% जो है वो हमारी डेथ्स होती हैं और 4 या 5% लोग ऐसे होते हैं जो दवाई बीच में छोड़ के चले जाते हैं
0: जी।
1: तो अगर ये जो जिनकी डेथ हो रही है ये वही लोग होते हैं जो जो है वो दवाई या तो बीच में छोड़ते हैं या फिर कई अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित जैसे कैंसर वगैरह से ग्रसित होते
0: हैं, जिनको नशे की आदत है और बीच में दवाई छोड़ देते हैं और दूसरों को फैला देते हैं, तो इस तरह से क्षय मुक्त होना थोड़ा मुश्किल भी है। डॉक्टर विनीत, आपसे जानना चाहेंगे सरकार टीबी के मरीजों को क्या सुविधा दे रही है?
1: अगर हम बात करें टीबी के मरीजों के लिए जो है वो पहले जो है वो सबसे पहले फ्री टेस्ट, जो सारे टेस्ट जो हैं वो टीबी के मरीज के फ्री होते हैं, फ्री दवाइयाँ, जो सारी दवाइयाँ हैं वो फ्री होती हैं। इसके अलावा जब तक टीबी के पेशेंट की ट्रीटमेंट चलती है तो सरकार की तरफ से 1,000 रुपया पर मंथ जो है वो टीबी के पेशेंट को न्यूट्रिशन के लिए उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है
0: जी।
1: और हिमाचल सरकार ने इसके अलावा जो पेशेंट कुछ हमारे एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है जो नॉर्मल दवाइयों को असर नहीं करती, अगर ऐसे टीबी के केसेस पाए जाते हैं तो उनको 1,500 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उस 1,000 के अलावा
0: जी, जी।
1: उन मरीजों को। उसके अलावा सरकार ने जो है वो एक निक्षय मित्रा, भारत सरकार ने निक्षय मित्र करके एक स्कीम निकाली है कि जो हमारे समाज के लोग हैं या कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो टीबी के पेशेंट्स को अडॉप्ट करें और उनको वो न्यूट्रिशनल जो है वो किट्स जो है वो डोनेट करें,
0: यानी उनके पोषण का पूरा
1: पोषण का ध्यान रखें
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: वो भी जो है वो हमारे पास अगर लास्ट ईयर जो है वो 1,500 के आसपास टीबी के पेशेंट थे तो वो 100% जो है वो उनको जो है वो इन निक्षय मित्रों ने गोद लिया हुआ था और इनको न्यूट्रिशन की किट्स प्रोवाइड की गई थी।
0: डॉक्टर विनीत, एक बात और जानना चाहेंगे, क्या हर लंबी खांसी जो होती है वो टीबी होती है? क्योंकि लोगों को इसको लेकर भ्रांतियां भी हैं।
1: हर लंबी खांसी टीबी नहीं होती, लंबी खांसी के जो है वो 100 से ज्यादा कारण होते हैं
0: जी।
1: लेकिन भारत की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण जो है वो टीबी है, उसके बाद जो है किसी को अस्थमा भी होता है, किसी को एलर्जी भी होती है, लेकिन हमारा काम यही है कि अगर खांसी होती है लंबी खांसी तो एक बार हम टेस्ट करवा लें, टीबी है तो टीबी की दवाई चले, अगर टीबी नहीं है कोई और बीमारी है तो उसकी दवाई चले।
0: और सबसे बड़ी बात कि कहते हैं कि इलाज से परहेज बेहतर, तो बचाव क्या रहेगा?
1: बचाव जो है वो टीबी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी है वो है हमारे कफ एटिकेट्स। हमारे समाज में जो है वो आपने भी देखा होगा बाजार में और जगह पे लोग खुले में थूक रहे होते हैं, खुले में खांस रहे होते हैं, तो अगर जो है वो हम समाज में सिर्फ कफ एटिकेट्स बता दें कि अगर आपको खांसी है, छींक आ रही है तो आप जो है वो रुमाल का यूज़ करें, टिश्यू पेपर का यूज़ करें, अगर वो नहीं है तो अपनी कोहनी का यूज़ करें, तो सिर्फ कफ एटिकेट्स अगर ला दें तो टीबी का जो है वो बीमारी बहुत हद तक कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है जो हमारी ये जो नशे की चीज़ें हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल और जो और नशे की चीज़ें हैं, उनको अगर हम कम कर दें तो टीबी से बचा जा सकता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारी न्यूट्रिशन, खान पान, चाहे वो टीबी का मरीज

0: हो या आम जनता हो, अगर अब जो है वो हम अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें, चाहे अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स, वेजिटेरियन है तो उस सोर्स से, पानी की मात्रा जो है वो अपनी बढ़ाएं, दिन में 3 लीटर तक पानी हो। और एक जो है वो आज इसी वर्ष जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कि जिन लोगों को जो है वो अत्यधिक रिस्क होता है टीबी का, उनकी जो है वो हम स्क्रीनिंग करें और जो है वो टीबी से बचाने की दवाई, वो ये जो दवाई जो है वो हफ्ते में सिर्फ एक बार खाते हैं और उसको 3 महीने तक हम उनको देते हैं, जैसे डायबिटिक हैं लोग या फिर एल्डरली हैं, 60 साल से ऊपर हैं, स्मोकर हैं, तो इनको जो है वो टीबी से बचाने की दवा अगर हम दे दें तो आने वाले सालों में उनको टीबी होगा ही नहीं।
1: डॉक्टर विनीत, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप टीबी के मरीजों से क्या कहना चाहेंगे कि वो जो दवा एक बार शुरू कर देते हैं तो उसे बीच में ना रोकें?
0: टीबी के मरीजों को जो है वो दो ही हमारी तरफ से संदेश होते हैं, एक तो जो है वो पूरा कोर्स पक्का इलाज एक बार शुरू कर दें और सही पोषण, अगर उनकी प्रोटीन जो है वो इंटेक अच्छा होगा, पानी वो ज़्यादा पियेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, तो टीबी की जो है वो बीमारी जो है वो 100% जो है वो क्योरेबल है, वो ठीक हो जाती है।
1: यानी कि अगर सही समय पर पहचान हो जाए, सही समय पर जांच हो जाए तो इलाज बिल्कुल संभव है टीबी का?
0: टीबी का इलाज जो है वो संभव है, लेकिन टीबी के इलाज पूरा करने में एक बहुत बड़ी बाधा जो हम महसूस करते हैं वो है टीबी के पेशेंट के डिस्क्रिमिनेशन, उससे भेदभाव। क्योंकि आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो टीबी का पेशेंट अगर किसी को पता लगता है तो ना उससे कोई बात करेगा, उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो इसी के कारण जो है वो लोग अपना टीबी का टेस्ट करवाते ही नहीं है।
1: जी, वही बात है ना कि समाज में डर और भेदभाव जो है सबसे ज्यादा देखा जाता है टीबी को लेकर।
0: और इसमें जो है वो मैं एक ही बात कहता हूँ कि टीबी के पेशेंट से जो है वो जब तक वो उस मरीज को जो है वो टीबी के बीमारी का पता नहीं था कि ये डायग्नोस हो चुका है, तब तक जो है वो हर जगह घूम रहा है, खांस रहा है, आपके साथ घरों में रह रहा है, बसों में जा रहा है, बाजार में घूम रहा है, तब उससे कोई नहीं डर रहा है, उस टाइम तक वो फैला सकता है। जब उसकी दवाई शुरू होगी, जब जो है वो टीबी के मरीज की दवाई शुरू हो जाती है, तब वो जो है वो टीबी को नहीं फैलाता है। 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है उसकी फैलाने की क्षमता। तो टीबी के मरीज से नहीं डरो, खांसी करने वाले आदमी से डरो जो फैला रहा है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर विनीत, जैसे कि एक बार किसी का पूरा कोर्स हो जाता है टीबी को लेकर, तो क्या उसमें दोबारा होने की संभावना रहती है?
0: हमारे पास जो है वो कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको अभी अपने पूरे लाइफ टाइम में या अभी तक जो है वो 10-10 बार टीबी हो चुका है। तो इसका कारण जो है वो मेनली यही है कि जो अगर आपने अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो अपनी पुरानी आदतें हैं, स्मोकिंग है, नशे की हैं, शुगर को कंट्रोल नहीं रखा है, अगर आप टीबी की दवाई खत्म होने के बाद फिर से उसी हालात में आ जाएंगे तो टीबी दोबारा से हो सकता है।
1: डॉक्टर विनीत, आज हमने टीबी से संबंधित आपसे जानकारी हासिल की, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम भी सबसे यही कहना चाहेंगे कि टीबी से डरे नहीं, इससे लड़े। इसी के साथ रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का आज का ही अंक यहीं संपन्न होता है, आगे लेते हैं, नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: FM शिमला पर अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग विषय पर डॉक्टर विनीत कुमार की सपना ठाकुर से बातचीत। FM शिमला पर अब सुनिए फिल्म संगीत।

परदेसी बाबू फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत लेकर आए हैं उदित नारायण की आवाज़ है दीवाना मस्ताना फिल्म का नाम। गीत लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, माफ़ कीजिएगा, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे प्राइमरी चैनल आकाशवाणी शिमला पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद यानी 9:31 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। 10 बजे समय रहेगा रिमझिम का। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर एकांश समाचार एकांश की प्रस्तुति रील्स का क्रेज या खतरे का खेल और 11:15 पर लोक संगीत। 11:30 पर समय रहेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। 12:10 पर फिल्म संगीत और 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम। 1:10 पर सैनिकों के लिए 2 बजे सुनहरी किरणें, 2:30 पर हिमगुंजन और 2:45 पर फिल्म संगीत। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सबसे पहले 4:20 पर सुनेंगे चंब्याली कार्यक्रम, 4:50 पर मंडियाली कार्यक्रम, 5:20 पर पंगवाली कार्यक्रम, 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर लाहौली कार्यक्रम। 7:10 पर समय रहता है किसानों

और बागवान भाई बहनों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम का। सात बजकर 56 मिनट पर रोजगार समाचार और 8 बजे आप सुनते हैं धारा रेगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे सुनील कुमार, सुनीता देवी और टेकचंद की आवाज में लोकगीत। 8 बजकर 15 मिनट पर फिल्म संगीत और 8 बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत।

रात 9 बजे लुत्फ उठाइए गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता में। रात 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10 बजे आप सुनते हैं फिल्म संगीत और 10:30 पर सुरबहार कार्यक्रम। तो ये थी जानकारी आज प्राइमरी चैनल आकाशवाणी शिमला पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप है FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी प्रसारित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएस सेवा पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
1: दस लाख
2: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
3: 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
2: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
3: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दे रही है राज्य सरकार, भाजपा पर शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी करने का लगाया आरोप। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज सातवां दिन। नगर निगम प्रशासन ने 41 कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वर्तमान में तेजी से बदलते दौर में आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमता, नवाचार व स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान भी किया है। धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित ना रहें, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत

0: और प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने। इस एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप है एफएम शिमला के साथ। 9:30 हो चुके हैं और ये वक्त है कुदरत के रंग कार्यक्रम का। मैं हूं आपके साथ ऋचा शर्मा। मनोरम वादियों में बसा हुआ पालमपुर, हिमाचल प्रदेश का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन, जहां एक बार जो आए वो पालमपुर का ही हो जाए। पालमपुर अपने सुहावने मौसम, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, सरपीली सड़कों और मीलों फैले चाय बागानों की सुंदरता लिए पर्यटकों को सदा ही आकर्षित करता रहा है।

पालमपुर चाय बागानों और देवदार के घने आकर्षक वृक्षों से घिरा हुआ है। अपने चाय बागानों के लिए विश्व भर में माना जाता है पालमपुर को, तभी तो इसे टी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि पालमपुर के नाम का अर्थ है बहुत प्यारा, बहुत सारा पानी वाला शहर, तभी तो इसे कभी ना पानी की कमी होने वाला शहर भी कहा जाता है। यहाँ पहली बार चाय की खेती की गई थी, तभी से ये कांगड़ा घाटी की चाय के नाम से मशहूर हो गया।

पालमपुर में पर्यटकों के लिए बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे न्यूगल पार्क, विंध्यवासिनी मंदिर, घुग्घर लांघा, गोपालपुर आर्ट गैलरी आदि। बात करते हैं पालमपुर का मशहूर विंध्यवासिनी मंदिर, जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है। यह भव्य मंदिर अपनी कलात्मक शैली और नक्काशियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण बेहद सुकूनदार और शांत रहता है, जिससे कोई भी

पालमपुर आज बड़े बड़े चाय बागानों के बीच में बसा है, इसलिए यहाँ आने वाले सैलानियों को आकर्षित करते हैं ये हरे भरे चाय के बागान। तो अगले बार अगर आप कहीं घूमने जाने के लिए प्रोग्राम बनाएं तो एक बार पालमपुर का चक्कर भी ज़रूर लगाएं।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ वक्त हुआ है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 और 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,69,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल है। इन चुनावों में 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे। उधर कांगड़ा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पंचायत चुनावों के लिए 26 मई को मतदान होगा और जिला प्रशासन ने इस बार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बेरवा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब प्रदेश के बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती है, ताकि उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी ना रहे। शिमला में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का आज सातवां दिन है। इस बीच हड़ताल पर बैठे सहब कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 41 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी शामिल है। नगर निगम प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी को पत्र जारी कर 270 आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान द्वारा पंचायती राज चुनावों के बाद AGM की बैठक में इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर अंतिम निर्णय लेने के आश्वासन के बावजूद भी ये कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। शिमला जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा जिले के शिलारू में 24 मई को एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। संघ के महासचिव CP मेहता ने बताया कि इनमें अंडर 20 आयु वर्ग के पुरुष व महिला खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से समय पर पंजीकरण करवाने की अपील की है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। आपको बता दें कि आज आप 3:30 पर सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम और 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं FM शिमला के साथ। 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपकी पसंदीदा कार्यक्रम का, जिसका नाम है सदाबहार गीत। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रवि का संगीत।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए अब आपको सुनवाते हैं सुनैना फिल्म का गीत यशुदास की आवाज़ में। गीत लिखा और संगीत है रवि रविंद्र जैन का।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: चुपके चुपके फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

स्ट्रेसफुल लाइफ में ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हमें स्ट्रेस ना देकर खुशियों से हमारी झोली भर दें। एक ही जिंदगी मिली है तो डॉक्टर की गोली के साथ क्यों अपने और अपने फ्रेंड्स की टोली के साथ ही से गुजारे। शर्मिली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, नीरज ने गीत लिखा है और एसडी बर्मन का संगीत।

बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, फिर भी हम चाहते हैं हमें वो मिल जाए। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है उसका मोह करना मानसिक पीड़ा को न्योता देता है। अमानुष फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, इंदीवर के बोल श्यामलाल मित्रा का संगीत।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

सदाबहार गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भी किसी भी वक्त सुन सकते हैं। वो उतने ही अच्छे लगते हैं जितना हमें पहली बार सुनने पर लगे थे। बस ये रहता है कि बीच में कोई रोके ना, कोई टोके ना, हम सुनते जाएं इन गीतों को। काला पत्थर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, साहिर के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: शराबी फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें हैं, फारूक कैसर के बोल, भप्पी लहरी का संगीत।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: किनारा फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में गुलजार के बोल, आरडी बर्मन का संगीत।

मीठे मीठे गीत सुनते सुनते कब हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो अगला गीत भी इसी तरह का आपके लिए लेकर आए हैं महबूबा फिल्म से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

सदाबहार गीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये समाचार सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब प्रदेश के बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती है, ताकि उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया

0: गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है ताकि बच्चों को अपने ही क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगे। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60,00,000 मतपत्र छपवाए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्के नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। उधर कांगड़ा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पंचायत चुनावों के लिए 26 मई को मतदान होगा और जिला प्रशासन ने इस बार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली जाएगी।
1: जिले भर में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाएगा। बड़ा भंगाल में भी इस बार एक हम पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा पंचायत का चुनाव गर्मियों में हो रहा है और काफ़ी लोग बड़ा भंगाल में माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो लोग भी मत अपने मत के उपयोग के अधिकार से वंचित ना रहें। इस दृष्टि से ये मामला माननीय आयोग के समक्ष रखा गया था और माननीय आयोग ने निर्देश दिया कि हमने वहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन इस्टाब्लिश करना है।
0: शिमला में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का आज 7वां दिन है। इस बीच हड़ताल पर बैठे सहायक कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 41 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी को पत्र जारी कर 270 आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।
2: बड़े अच्छे माहौल में हमारी बैठक भी हुई है और सब ने इस चीज़ को माना भी है कि हम आपके परिवार हैं, तो मैं परिवार का एज ए मुखिया होने के नाते मैंने इस चीज़ को समझा दिया और अब हम अपने आप को इस कार्य को जल्द से जल्द उसको सुलझा भी लेंगे।
0: वहीं दूसरी ओर सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यदि निगम प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
3: अगर सुबह 12 बजे से पहले बैठक का आयोजन करके समाधान की ओर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से अगले चरण के आंदोलन का कल हम ऐलान करेंगे, जो इससे ज्यादा उग्र होगा और वो जरूर प्रबंधन को और प्रशासन जो है एनसी का उसको दिक्कत खड़ी करेगा। उम्मीद ये है ये बातचीत का दरवाजा खोलेंगे और मुद्दों का समाधान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान मंडी के निवासी व एनएचपीसी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। इस उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
4: इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में स्वच्छ ऊर्जा, जल विद्युत, हरित विकास, खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। भूपेंद्र गुप्ता की भागीदारी भारत के ऊर्जा विकास में उनकी विशेषज्ञता और एनएचपीसी की बढ़ती वैश्विक भूमिका की बड़ी पहचान माना जा रहा है। मंडी के विजय हाई स्कूल के पूर्व छात्र भूपेंद्र गुप्ता पिछले 3 दशकों से देश के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीते कल ऊना में सर्वाधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के मैदानी जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
5: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी ये समाचार रिले किए गए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

सुबह की प्यारी धूप के साथ और इस सुहावने मौसम में एफएम परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। तो चलिए जी, आज के संगीत में इस सफर का करते हैं एक बार फिर से आगाज। 11:06 हो चुके हैं और ये समय है एक बार फिर से संगीत के कारवां को आगे की ओर ले जाने के लिए, और इस कारवां में मैं निभाऊंगी आपका साथ, आपकी रेडियो हम सफर रीटा पामा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वायदा है हमारा आपसे कि हम आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे अब से लेकर ठीक शाम 4 बजे तक। तो चलिए, अभी समय है पुराने फिल्मी गानों का, तो हम आगाज बेहद ही खूबसूरत गाने के साथ कर रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, बस बने रहिए एफएम शिमला के साथ और एंजॉय कीजिए प्रोग्राम का पहला नगमा जूली फिल्म से।

0: दिल क्या करे जब किसी से।
1: तो जी, इस प्यारी सी सुबह का आनंद आप एफएम शिमला पर गीतों के द्वारा ले रहे हैं। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत सुबह है और इस सुबह को हम और खूबसूरत बना रहे हैं पुराने गीतों के जरिए। तो आप बने रहिए एफएम शिमला पर। कार्यक्रम का अगला नगमा हम सुनेंगे, लेकिन इस संदेश के बाद।
2: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
3: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
2: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
3: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
1: तो चलिए, खूबसूरत फिल्म में सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज। बस आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक से बढ़कर एक नगमे कर रहे हैं आप सभी का इंतजार।

0: तो बस आप यूं ही बने रहिए एफएम शिमला पर, क्योंकि पुराने फिल्मी गीत कर रहे हैं आप सभी का इंतजार। अगला गीत सुनवाएंगे आपको, लेकिन इस संदेश के बाद।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

तो चलिए जी, संगीत का आनंद ले रहे हैं, पुराने फिल्मी गीत सुन रहे हैं आप। तो संगीत की मधुर धुनों के साथ हाल जान लेते हैं थोड़ा सा मौसम का। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से शिमला का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म बना हुआ है, पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम थोड़ी सी करवट ज़रूर ले सकता है। शायद बारिश की झमझम भी हम देख सकते हैं, हमें देखने को मिल जाए, जिसे गर्मी से थोड़ी सी राहत तो हमें ज़रूर मिल सकती है। तो होपफुली हम गर्मी से राहत के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं, पर बहरहाल ज़्यादा राहत मिलने वाली नहीं दिख रही है। तो देखिए क्या हुआ, मौसम है, मौसम का जो गर्म मौसम है इसका भी मज़ा लीजिए, इसका भी आनंद लीजिए। गर्मी है, गर्मी का भी अपना ही मज़ा है, तो एंजॉय कीजिए गर्मी का मौसम। पर हाँ, गर्मी के मौसम में खाने पीने का ख्याल ज़रूर रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, और हर चीज़ ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। विटामिन डी भी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपकी सेहत भी ज़रूरी है, गाने सुनना भी ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आप हमारी जानकारी का लाभ उठाएंगे। बहरहाल अभी प्रोग्राम का अगला नगमा सुनने का वक्त है।

तो चलिए जी, जानी दुश्मन के इसी नगमे के साथ अभी के लिए हम पुराने फिल्मी गानों को देते हैं यहीं पर विराम, क्योंकि अब 11:30 हुए हैं, समय हो चला है

0: पहाड़ी संगीत प्रोग्राम का लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में। बने रहिए आप एफएम शिमला के साथ।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

तो लीजिए, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 11:31 हो चुके हैं। आप भी अपनी घड़ी का समय मिला सकते हैं। 11:31 और 46 सेकंड हुए हैं और ये समय है पहाड़ी संगीत कार्यक्रम।

तो लीजिए, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 11:31 हो चुके हैं। आप भी अपनी घड़ी का समय मिला सकते हैं, 11:31:46 हुए हैं और ये समय है पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का। पहाड़ी संगीत कार्यक्रम जो कि रहता है हिमाचली लोकगीतों पर आधारित। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे डॉक्टर हुकुम शर्मा और संत राम शर्मा के गाए लोकगीत के साथ। आप बने रहिए FM शिमला के साथ और इंजॉय कीजिए एक से बढ़कर एक नगमे।

0: पहाड़ों की वादियों से गूंजती सुरों की मीठी आवाज़ सही है हिमाचली लोकगीतों की पहचान, जो देवभूमि हिमाचल की मिट्टी की खुशबू हर लोकगीत में बसाती है, जहाँ हर धुन में बसी है परंपरा और हर गीत में झलकता है पहाड़ों का प्यार। ऐसी ही नगमे हमारे प्रोग्राम की है शान, जो रोज़ाना सुनवाते हैं हम आपको FM शिमला पर, जो आपने ट्यून किया है 103.7 MHz पर। तो चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा ज़रूर सुनवाएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: तो चलिए जी, इस लोकगीत में आवाज़ है बसंत लाल ठाकुर और रेखा देवी की, आप एंजॉय कीजिए इस लोकगीत को।

तुझे दिल से निकली वो धुनें जो सीधे ही हमारे अंतर मन को छू जाती है। इन धुनों में समाया है पहाड़ों का सुकून और अपनेपन का प्रेम और अपनेपन का एहसास। ढोल नगाड़ों की थाप और सुरों की मिठास से ही है हिमाचली संस्कृति की खास पहचान, जो गीतों के द्वारा हम रोज़ाना पहुंचाते हैं आप तक। चलिए अब अमर राठौर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनवाते हैं आपको।

0: इस वक्त लोकगीतों का आनंद आप FM शिमला पर ले रहे हैं। लोकगीत जारी रहेंगे पर इस संदेश के बाद।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: तो जी, इस वक्त लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं आप। हर लोकगीत जो हमें सुनाता है एक कहानी, जो रिश्तों के प्यार, प्रकृति की सुंदरता और हमारी संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाता है। ये शब्द और धुनें वो होती है जो हर दिल को अपने ही रंग में रंग देती है। इन सुरों में छुपी है पहाड़ों की सादगी और जीवन की सच्चाई। वादियों की ठंडी हवा के साथ बहुत ही मन भावने लगते हैं ये लोकगीत। एक अलग ही एहसास करवाते हैं, एक अलग ही दुनिया में लेकर जाते हैं लोकगीत। तो चलिए, अंजना और रीटा देवी की आवाज़ में अगला लोकगीत सुनवाते हैं आपको।

0: तो लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं आप, हिमाचली लोकगीत सुनवा रहे हैं हम इस प्रोग्राम में आपको। कार्यक्रम जारी रहेगा इस संदेश के बाद।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

लोकगीतों की मधुरता हमें जो है हमारी संस्कृति के साथ साथ हमें आपस में भी संजो कर रखती है। जब भी हम इन लोकगीतों को सुनते हैं हमें अपनी संस्कृति का एहसास होता है जो हमें हमारी संस्कृति को जोड़ कर रखती है। जब भी हम लोकगीतों को सुनते हैं तो हमें अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी ज़मीन और मिट्टी के साथ जुड़ने पर भी विवश कर देती है। ऐसे ही गीत हैं हमारे लोकगीत जो दिलों को सुकून के साथ साथ हमें अपनी मिट्टी से भी जोड़ देते हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं आखिरी लोकगीत रेनू और साथी की आवाज़ में।

तो चलिए जी, इसी लोकगीत के साथ बहरहाल अभी हम पहाड़ी संगीत कार्यक्रम को देने वाले हैं यहीं पर विराम। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब हिंदी समाचारों के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। कीजिए आप बस कुछ ही पलों का इंतज़ार, अब हमारी आपसे मुलाकात होगी ठीक 12:10 पर। तब तक सुनते रहिए FM शिमला, बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन

शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीत सिर्फ सुना ही नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर आज संगीत में इस सफ़र को और ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि 12:10 हो चुके हैं और अपने वायदे के मुताबिक हाजिर हैं हम एक बार फिर संगीत के कारवां को आगे की ओर ले जाने के लिए। संगीत जो हर धड़कन में छुपा है, हर सुर कुछ ना कुछ कहानी सुनाता है, हर सुर में छुपा है एक अंदाज, एक प्यार। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस सफ़र में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफ़र रीटा पामा, 12:11। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं इस नगमे के साथ।

0: तो देखिए जी, इस प्यारी सी सुबह का हमने जो आगाज़ है खिली खिली धूप के साथ किया, और धूप के साथ साथ हम लेकर आए हैं फिल्म शिमला पर आपके लिए एक से बढ़कर एक फिल्मी नगमे। तो ये एक नगमे जारी हैं और आप सुनते रहिए फिल्म शिमला पर इस संदेश के बाद।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

तो चलिए जी, इसी नगमे के साथ अभी के लिए फिल्म संगीत प्रोग्राम को देने वाले हैं यहीं पर विराम। लेकिन अभी सुरों की महफिल थमी नहीं है, हम फिर हाजिर होंगे 1:10 पर। तब तक आप बने रहिए FM शिमला के साथ। अब 12:20 होने वाले हैं, कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी शिमला और FM शिमला 103.7 MHz से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला सम्मेलन प्रसारित होगा, जिसे आप DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।

0: महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को कमलेश शर्मा और
1: मीनाक्षी शर्मा का नमस्कार।
0: बहनों, जिंदगी में चुनौतियां ना आई हों ऐसा कभी होता ही नहीं है, और जिंदगी कभी हंसाती है और कभी रुलाती भी है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं।
1: जी, अगर आप जिंदगी में चुनौतियों से डरकर हार मान लेते हैं तो आपका असफल होना निश्चित है। आप चुनौतियों को अवसर मान सकते हैं, अवसर मान के आपको चलना है। आपको देखिए, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, तो आप ज़िंदगी के हर कदम में सफल होते हैं।
0: बिल्कुल।

0: और चुनौतियों में कोई ना कोई अवसर भी छिपा होता है, और मीनाक्षी देखिए सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। इसलिए कभी भी जीवन में परीक्षा की तरह आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर मुश्किल कोई आपको सबक ज़रूर देती है।
1: जी, परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेने नहीं, हमें सिखाने आती है। हर चुनौतियों के पीछे एक देखिए बड़ा वरदान छिपा होता है। समय तो परिवर्तनशील होता है। एक समय ऐसा आता है कि आप कभी कभी सातवें आसमान पर होते हैं, और कभी ऐसा वक्त भी आता है कि आप कुछ भी नहीं होते हैं, और परेशान और मुसीबतों से आप ऐसे समय में डर जाते हैं। लेकिन ये आपकी परीक्षा का समय होता है बहनों, और ये समय होता है चुनौतियों का सामना करने का।
0: बिल्कुल, जिस प्रकार मेहनत आपके हुनर को निखारती है, उसी तरह जीवन में आने वाली बार बार चुनौतियाँ आपको अंदर से मजबूत करती हैं। जब आप एक चुनौती का सामना कर आगे बढ़ते हो, तो आपके हौसले और भी मजबूत हो जाते हैं।
1: जी, जीवन में चुनौतियाँ भी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में जितनी चुनौतियाँ होंगी, आप उतना ही ज़िंदगी में नया सीखेंगे, और साथ साथ उतनी ही आप तरक्की भी करेंगे।
0: सफलता की राह में बाधाएं आना आम बात है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी कोशिश, लगन और मेहनत कितनी है।
1: जी, देखिए राह में कई चुनौतियाँ भी आती हैं। नई चुनौतियों का सामना आपको हिम्मत के साथ करना चाहिए। कुछ बातों को अपनाकर चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि आपको अपनी जो सोच है वो सकारात्मक रखनी होती है। किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो सोच है वो सकारात्मक सोच बनाए रखने से क्या होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, और रास्ते में आने वाली जो समस्याएं हैं वो एक मौके के रूप में आपको उसको देखना चाहिए, और सकारात्मक सोच के साथ आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते
0: जी
1: हैं।
0: हाँ, अपने लक्ष्यों को चुनौतियों की तरह लें, इससे आप खुद को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाने से चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है।
1: जी, देखिए लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने से राह में आने वाली चुनौतियाँ बहुत आसान लगती हैं, और आप सही दिशा में आगे भी बढ़ते हैं। चुनौतियों को एक नई अवसर की दृष्टि से आपको देखना होता है।
0: बिल्कुल बहनों, क्या होता है ना कि कभी-कभी हम ऐसी मुश्किलों से घिर जाते हैं जिससे बाहर निकलना कई बार थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में अपने आसपास के लोगों से अगर आप मदद ले लेती हैं, तो उन चुनौतियों का आप सामना कर सकती हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपके दोस्त हैं, परिवार या साथ में काम करने वाले लोग भी आपके काम आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए मदद लेने में कभी भी आपको झिझकना नहीं है। अनुभवशील लोगों से आप सलाह लें, और उनसे अनुभव जो है आप साझा करें, आपको चुनौतियों से बाहर निकलने का ये आपको रास्ता दिखाएंगे।
0: बिल्कुल, और देखिए ना मीनाक्षी, लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए ज़रूरी है आप वहां तक पहुंचने के लिए अच्छे से योजनाएं बनाएं।
1: जी, देखिए आप क्या कर सकते हैं कि एक टाइम टेबल बना सकते हैं। टाइम टेबल बनाकर उस पर आप काम करें। आप एक अच्छी तैयारी और अच्छी योजना आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। सही योजना बनाकर काम करने से आपको नए अनुभव प्राप्त होते हैं।
0: सही योजना, नए कौशल और ज्ञान की प्राप्ति से मदद मिलती है। सही योजना आत्मविश्वास का सुनहरा अवसर है।
1: जी, देखिए हर समस्या को एक रुकावट के बजाय कुछ नया सीखने और खुद को साबित करने के अवसर के रूप में आप देख सकती हैं।
0: किसी भी बड़ी चुनौती को छोटे-छोटे हिस्सों में अगर आप बांट लें, तो इससे आपको घबराहट नहीं होगी, कदम कदम पर आपका आत्मविश्वास ही बढ़ेगा।
1: बिल्कुल बढ़ता है, और अपनी गलतियों से आपको देखिए सीखना होता है। आपने कहाँ गलती की है और कहाँ कमी रह गई है हमारे प्रयासों में, ये आपको देखना है, ताकि जो है अगली बार आप बेहतर काम कर सकें।
0: किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है।
1: जी
0: देखिए, अच्छी नींद, उचित पोषण और व्यायाम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: जी
0: चुनौतियों को अवसर माने बहनों, हम तो यही कहेंगे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचान

0: करने का अवसर देती है।
1: जी
0: तो बहनों आइए, ये बातें तो हम और भी आपसे करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको सुनवाते हैं गीत।
1: जी

तो बहनों, अब बात करते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर के बारे में। आकाशवाणी भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है। ये केवल सूचना और मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की पहचान भी है।

0: तो बहनों, अब बात करते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर के बारे में। आकाशवाणी भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है। ये केवल सूचना और मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की पहचान भी है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और साल था 1927 जब भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। उस वक्त इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था और लोगों के ये जीवन का हिस्सा बनने लगा। साल 1936 में इसे नया नाम दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पूरे देश में इसने पहचान बना ली।
0: और आज आकाशवाणी ने 90 साल का सफ़र तय कर लिया है। एक ज़माना था जब लोग सुबह उठकर आकाशवाणी की मधुर धुन के साथ दिन की शुरुआत करते थे और कई कार्यक्रमों के साथ उद्घोषकों की आवाज़ तक को भी याद रखते थे।
1: बिल्कुल, शुरुआती दिनों में जब घर घर में टीवी और मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो लोग परिवार और पड़ोसियों के साथ बैठकर आकाशवाणी सुना करते थे। समाचार बुलेटिन, हवा महल, विविध भारती, फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम सुनकर लोगों को मनोरंजन और अपनापन मिलता था।
0: जी, आकाशवाणी ने देश के लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और फिल्मी गीतों को हर श्रोता तक पहुंचाया। सुबह के भजन और रात के कवि सम्मेलन श्रोताओं के दिलों को छू जाते थे। त्योहारों पर विशेष प्रसारण होता था। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश सुनना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होता था।
1: आकाशवाणी सुनना केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि सामूहिक आनंद का अवसर भी था। गांव के चौपालों पर, शहर के घरों में लोग रेडियो के सामने बैठकर खबरें सुनते थे। आकाशवाणी की सबसे सुनहरी यादें हैं जिसमें समाज को जोड़ने का काम किया है।
0: जी बिल्कुल, और भले ही आज टीवी और मोबाइल और इंटरनेट का युग है, लेकिन आकाशवाणी की सुनहरी यादें आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। आकाशवाणी की पहचान आज भी कम नहीं हुई है और FM प्रसारण ने तो युवाओं को इससे जोड़े रखा है। अब लोग देखिए चलते फिरते मोबाइल पर भी आकाशवाणी के प्रोग्राम जो है सुनते हैं।
1: समय बदला है, नई नई तकनीक आ रही है और ये डिजिटल युग का ज़माना है। आर्टिफिशियल ब्रॉडकास्टिंग और स्मार्ट डिवाइस का ज़माना है, लेकिन इन सब के बीच आकाशवाणी की पहचान और भरोसा आज भी कायम है। रेडियो आज भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है।
0: जी, सूचना के क्षेत्र में आकाशवाणी सबसे भरोसेमंद माध्यम रहा है और चाहे राष्ट्रीय समाचार हो या क्षेत्रीय समाचार हो या ताज़ा बुलेटिन, आकाशवाणी ने हमेशा सही और सटीक जानकारी दी है। आपातकाल, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कठिन समय में भी लोगों ने सबसे पहले आकाशवाणी के समाचारों पर भरोसा किया है और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आकाशवाणी अपनी वही विश्वसनीयता बनाए हुए है।
1: ये आकाशवाणी है, ये उद्घोषणा, हर समाचार बुलेटिन और कार्यक्रम की पहचान है। लोग रेडियो पर ये आवाज़ सुनते हैं, जानकारियाँ और मनोरंजन की उम्मीद रखते हैं। इस वाक्य ने आकाशवाणी को विशेष पहचान दी है।
0: जी, आकाशवाणी के 90 वर्ष सच में गर्व और खुशी का विषय है। ये केवल रेडियो नहीं बल्कि भारत की आवाज़ है और आने वाले समय में भी आकाशवाणी अपनी पहचान ऐसे ही बनाए रखेगा। आकाशवाणी भारत की अमूल्य धरोहर है। ये केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा और जन जागरण का भी सशक्त साधन है और इसकी जो महत्ता है वो हमेशा यूं ही बनी रहेगी।

बहनों, आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे मौसम में ठंडी और ताज़गी देने वाली चीज़ें आपको बहुत पसंद आती है। तेज़ धूप और पसीने से शरीर थक जाता है, और ऐसे में अगर एक गिलास ठंडा शरबत मन और शरीर

0: दोनों को राहत देता है अगर वो मिल जाता है।
1: बिल्कुल, और शरबत की देखिए ना तासीर कमलेश ठंडी तो होती है ना, और इसलिए इसका इस्तेमाल गर्मियों आते ही होने लगता है। शरबत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें मौजूद तरह तरह के स्वाद और खुशबू हमारे पानी पीने की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं, और शरबत की वजह से शरीर को ज़्यादा पानी मिल जाता है जो कि गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए ज़रूरी भी होता है।
0: शरबत एनर्जी देने वाले फलों और फूलों से तैयार होता है, इसलिए इन्हें पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है
1: जी।
0: इसे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक बहुत ही खुशी खुशी से पिया जा सकता है। बहनों, और शरीर को ठंडक देने के लिए बाज़ार में कई तरह के रेडीमेड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से कई बार वो अच्छे भी नहीं होते हैं। और अगर आप घर पर ही कुछ बना लेती हैं तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बात भी रहती है।
1: जी बिल्कुल बहनों, शरबत घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं। इनमें प्राकृतिक फल और स्वाद का उपयोग होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो बहनों, आज खाना खजाना के अंतर्गत हम आपको शरबत की रेसिपी बताएंगे। पहले आपको बताते हैं पुदीना शरबत। गर्मियों में पुदीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शरीर को ठंडक प्रदान करता है और साथ ही में तरोताज़ा भी रखता है। इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए बहनों, वो भी आप नोट कर लें। ताज़े पुदीने के पत्ते 1 कप, नींबू 2, चीनी आपको 5 से 6 चम्मच लेनी है, काला नमक 1 छोटा चम्मच, साधारण नमक आपको स्वाद अनुसार लेना है, भुना जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, साथ ही में बर्फ़ के टुकड़े आपको आवश्यकता अनुसार लेने हैं।
0: बहनों, आप बता देते हैं कि इसे आप किस तरह से बना सकती हैं। तो सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें ताकि अगर उसमें कहीं मिट्टी या गंदगी लगी है तो साफ़ हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: और मिक्सी में पुदीने की पत्तियां, चीनी और थोड़ा पानी डालकर बारीक सा आप इसका पेस्ट बना लें
1: जी।
0: अब इस पेस्ट में नींबू का जो रस है वो डाल लें, काला नमक, साधारण नमक और भुना ज़ीरा डालकर आप इसे मिला लें। इसमें क्या होगा कि शरबत का जो स्वाद है और भी बढ़ जाता है जब आप दोनों तरह के नमक मिलाते हैं, एक तो सफ़ेद नमक जो साधारण नमक होता है और दूसरा काला नमक
1: जी।
0: तो इसमें आप ठंडा पानी मिलाकर अच्छे से इस शरबत को तैयार कर सकती हैं, और गिलास में चाहे तो आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं
1: जी।
0: और विनाक्षी देखिए ना, ये जो शरबत आप बना रही हैं ना, ये जो पुदीना का पेस्ट है, चाहे तो आप इसे पहले बनाकर भी रख सकती हैं और जब भी आपको ज़रूरत है तो आप शरबत बना सकती हैं। और वैसे भी पुदीना जो है घर में होता ही है, और आजकल गर्मियों का मौसम है तो पुदीने का जितना आप इस्तेमाल करती हैं ये ज़्यादा अच्छा रहता है, और आपकी जो खाने की भूख है वो भी ये बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल। अब बात करते हैं आम पन्ना की। आम पन्ना कच्चे आम से बनाया जाने वाला एक, जो हम कह सकते हैं कि फेमस है, भारतीय शरबत फेमस है ना
0: जी,
1: जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है और इसका खट्टा मीठा जो स्वाद है वो सभी को पसंद आता है।
0: बिल्कुल, देखिए ना बहनों, आम का अचार तो आप बहुत खाती ही होंगी, और इस तरह से अगर आम का पन्ना बना लेती हैं तो वो गर्मियों में आपको एक ताज़गी, सुकून देगा और एक साथ ही साथ एक नया सा स्वाद भी आप चख पाएंगी
1: जी।
0: कच्चे आम 2 बड़े आप ले सकते हैं, चीनी या गुड़ 4 से 5 चम्मच, आप चाहें तो चीनी लें या गुड़ अगर आपको पसंद है तो आप गुड़ भी ले सकती हैं, काला नमक 1 छोटा चम्मच, भुना ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, और थोड़ी सी आप चाहें तो इसमें पुदीना की पत्तियां भी ले सकती हैं, और ठंडा पानी 4 से 5 गिलास या जितना आप जो है आम पन्ना बनाना चाहती हैं, और साथ में आप रखें बर्फ़ के टुकड़े
1: जी। अब बात करते हैं विधि की। कच्चे आमों को धोकर आप कुकर या बर्तन में अच्छी तरह से उबाल लें। देखिए बहनों, आप चाहें तो इसे आप तंदूर में भी भून के बना सकती हैं। जब ये नरम हो जाएं तब उन्हें ठंडा करें। अब आम का छिलका हटाकर उसका गूदा निकालें। अब मिक्सर में आम का गूदा, चीनी या गुड़ और काला नमक, भुना जीरा और पुदीना डालकर आपको इसको पीस लेना है। इस मिश्रण में ठंडा पानी मिलाकर अच्छी तरह से आप इसको घोलें, यानी कि इसको मिक्स करें, और गिलास में बर्फ़ डालें और ऊपर से थोड़ा पुदीना सजाकर आप इसे ठंडा ठंडा आम पन्ना जो है सर्व कर सकती हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल बहनों, देखिए ना, शरीर को ठंडक और ऊर्जा देने के लिए आप भी शरबत

0: बहनों आ पहुँचे हैं हम चलते चलते के अंतिम पड़ाव पर और बात करते हैं आज किचन टिप्स के।
1: देखिए बहनों, रसोई घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हर महिला के कदम पड़ते हैं और रसोई घर जितना साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है, काम करना उतना ही आसान होता है।
0: जब आप हर समय रसोई घर में काम करते हैं ना, तो आपको पहले से ही पता हो जाता है कि कौन सा सामान कहाँ है और किस चीज़ की ज़रूरत है। किचन में काम करते समय छोटे छोटे टिप्स अगर आप आज़माते हैं तो काम बहुत जल्दी और आसान हो जाता है। तो इसके लिए बहनों क्या कर सकते हैं आप?
1: देखिए बहनों, आलू के छिलकों से आप तवा भी साफ़ कर सकती हैं। अगर आप आलू के छिलके से तवा रगड़ती हैं तो ये साफ़ हो जाता है।
0: पुराने अखबार से शीशे साफ़ अगर आप करते हैं ना तो अच्छी चमक आती है
1: जी, साथ ही में फ्रिज में अगर स्मेल आ रही है तो आप फ्रिज में बेकिंग सोडा रख सकती हैं, इससे स्मेल नहीं आती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, गर्मियों के मौसम में तो फ्रिज का इस्तेमाल बहुत होता है बहनों। तो कई बार क्या होता है ना कि बदबू आने लगती है, तो इसके लिए आप बेकिंग सोडा अगर उसमें रख लेती हैं तो काफ़ी हद तक उसकी बदबू कम हो जाती है।
1: जी, साथ ही में आलू उबालने के बाद जो पानी बच जाता है ना, आप उसको पौधों में डाल सकती हैं, इससे आपके पौधे भी हरे रहेंगे और पानी वेस्ट भी नहीं होगा।
0: बहनों प्याज तो आपको काटना ही पड़ता है और प्याज कई बार इतना तीखा होता है ना कि आंखों को बहुत जलन देता है। प्याज काटने से पहले चाकू पर अगर आप नींबू लगा लेती हैं तो इससे आपकी आंखें कम जलेंगी।
1: सूखी ब्रेड का चूरा बनाकर आप कटलेट में मिला सकती हैं, इससे जो आपके कटलेट्स हैं वो क्रिस्पी बनेंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल, और अगर आपकी अलमारी में खुशबू चाहिए तो अलमारी में कपूर आप रख सकती हैं, जिससे आपकी अलमारी में खुशबू भी आएगी और ताज़गी भी बनी रहेगी।
1: जी,

0: आकाशवाणी शिमला और FM शिमला से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सम्मेलन। इस समय दोपहर का 1 बजने को है। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और

0: सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. India has called out Pakistan's long-tended record of genocide at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said, it is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
3: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission

जब अपना एहसास दूसरों तक पहुंचाने के लिए शब्द कम पड़ जाएं, तब इंसान संगीत का सहारा लेता है और वो सहारा इतनी गहराई से हमें सहारा देता है कि रिश्तों का एहसास जागने लगता है। हर एक गीत अपने साथ एक याद, एक एहसास और मुस्कान को बिखेरता है और ऐसी ही मुस्कान हम इस प्रोग्राम में बिखेरेंगे आप सभी के लिए। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने और इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 1:11:30 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। चलिए अब ज़्यादा बातें हम नहीं करने वाले आपसे, अब ले चलते हैं सीधे आपको फिल्म संगीत के सफ़र पर और कार्यक्रम का आगाज करेंगे हम इस डांसिंग नंबर के साथ। बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो जी फिल्म म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं आप एफएम शिमला पर, और हम इस आनंद को रखेंगे बरकरार बिल्कुल, लेकिन इस संदेश के बाद।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं,
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं, और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: तो देखिए जी, इस वक्त आप फिल्म संगीत का आनंद एफएम शिमला पर ले रहे हैं। संगीत देखिए वो जादू है जो बिना शब्दों के दिल की हर बात कह देता है, और अगर संगीत के साथ खूबसूरत शब्दों का मिलन हो जाए तो क्या ही बात है। सुर और शब्द दोनों ही खूबसूरत हो तो एक बेहतरीन गीत को रूप देते हैं, और ऐसे ही गीत हमारे प्रोग्राम फिल्म संगीत को ख़ास बनाते हैं, ख़ास नगमे, ख़ास लोगों के लिए। चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा एंजॉय करते हैं।

0: तो देखिए जी, इस वक्त गर्मियों का मौसम शिमला में चरम सीमा पर है और गर्मियों के सुहावने मौसम का आप आनंद लीजिए। लेकिन इस आनंद के साथ साथ थोड़ी सी चुनौतियों का सामना भी है जो हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे में खासकर पानी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मौसम में पानी के जो स्रोत हमारे पास हैं, जो सोर्सेज हैं, वो अक्सर सूख जाते हैं। तो देखिए, आपको ही ध्यान रखना है, आपको पानी का ख्याल रखना है, पानी का कम इस्तेमाल करना है, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना है। पानी जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें, पानी की टंकियों को ओवरफ्लो बिल्कुल ना होने दें, और ज़रूरत हो तभी आप टैप को खोलें, क्योंकि टैप खोलकर काम बिल्कुल ना करें। बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद भी इस बात का ख्याल रखें। और जिस पानी से आप सब्जियों को धोते हैं, उन पानियों को आप पौधों में भी डाल सकते हैं, उसका आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत बड़ी जो है एक हमारे लिए समस्या हो जाती है गर्मियों में, इसलिए आप गर्मियों में थोड़ा सा एहतियात के साथ पानी का इस्तेमाल करें। पानी है तो जीवन है, और जीवन है तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, जीवन का आनंद हम ज़रूर लेते रहेंगे और गाने भी सुनते रहेंगे, लेकिन इस संदेश के बाद।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं, अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

तुझे फिल्म संगीत का आनंद आप FM शिमला पर ले रहे हैं। देखिए, जिंदगी प्रेम से जीने का नाम है, इसलिए दिल खोल कर जीने का आनंद लीजिए। संगीत सुनिए, घूमिए फिरिए, जिंदगी के हर रंग को महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक बार ही हमारे हाथ में है। इसलिए हमेशा खुश रहिए और संगीत तो आप सुनते ही रहिए। चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनवाते हैं आपको।

0: तो जी बिल्कुल, आप इसे इंजॉय कर रहे हैं फिल्म संगीत प्रोग्राम FM शिमला पर 103.7 MHz पर। कार्यक्रम जारी रहने वाला है संदेश के बाद।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य

0: लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
0: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आसपास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

देखिए, वक्त बदल जाता है पर कुछ गाने हमेशा दिलों में हमारे बसे रहते हैं, वो हमारे दिलों पर हमेशा राज करते हैं। अगर हम टेंशन में हो तो अगर हम गाने सुन लें, हमारी टेंशन पल भर में छू हो जाती है। और अगर हम खुश हों तो ये गाने तो हमें बहुत ही खुशी देते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए, ऐसे ही गाने हम रोज़ाना सुनवाते हैं FM शिमला पर आपको। अब कार्यक्रम का अगला नगमा आपके रेडियो सेट पर।

0: इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप फिल्म संगीत एफएम शिमला पर. प्रोग्राम जारी रहने वाला है पर इस संदेश के बाद.
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है.
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा. 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें.
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी. तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक. पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें.

तो जी हमारे स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 2:01 और ये समय है सबरंग कार्यक्रम का। जी हाँ, सब रंगों से मिलकर जो बनता है वो है सबरंग, और हर तरह के रंग होते हैं उसमें जो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और अगर उस तरह के गाने आपको सुनवा दिए जाएं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, इस प्रोग्राम में हर तरह के गाने हम सुनवाते हैं आपको, चाहे गज़लें हों, रॉक म्यूज़िक हो या फिर कवालीज हो। तो चलिए आज हम आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम का अनूप चलोटा की गाई इस गज़ल के साथ। बस आप यूँ ही बने रहिए और अपने आनंद को रखिए भाई बरकरार FM शिमला पर।

तो देखिए, गज़ल का आनंद आपने लिया जो आपने अनूप चिलोटा की आवाज़ में सुनी। देखिए, गज़लें सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि उन्हें दिल से भी महसूस किया जाता है। हर मिसरा दिल की किसी याद को छू जाता है, किसी कोने में हमारी याद को फिर से दोहरा जाता है और हर आवाज़ एक नए एहसास जगाती है। ऐसी ही होती है गज़लें जो भी आपने सुनी अनूप चिलोटा की आवाज़ में। इस वक्त आप सबरंग प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं FM शिमला पर। तो चलिए अब अगला नगमा, अगला ट्रैक सुनवाते हैं जुनू की आवाज़ में आप सभी को।

तो चलिए अभी इसी नगमे के साथ सबरंग कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम। तो देखिए जी, अभी हमारा जो है संगीत के सुहाने सफ़र का सफ़र अभी थमा नहीं है। अब इस वक्त 2:15 होने वाले हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। अब दोपहर हिंदी समाचारों के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी ठीक 2:30 पर। तब तक आप सुनते रहिए FM शिमला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं।

0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
3: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिंस।

0: ज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब, मुर्दों को भी जगा देती है, रिश्तों में

0: जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने तो लीजिए 2:30 हो चुके हैं और अपने वायदे के मुताबिक हाजिर हैं हम एक बार फिर आपको संगीत में इस सफ़र पर ले जाने के लिए। तो ये समय है जी इस वक्त शिखरों के स्वर कार्यक्रम का, शिखरों के स्वर कार्यक्रम जो कि रहता है पहाड़ी लोकगीत पर आधारित, खूबसूरत समय के खास पलों का खास अंदाज के साथ अपने स्वरों में लोगों तक गांव की घटनाओं और कथाओं को सुनाना ही लोक संगीत की खासियत है। हिमाचली लोकगीत जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इनमें इतनी मधुरता है कि किसी भी गीत को जब हम सुनते हैं ऐसा लगता है कि हम उसी समय में वक्त गुजार रहे हों, हम वहीं पर पहुंच गए हों। तो ऐसे ही नगमे हमारे शिखरों के स्वर प्रोग्राम को ख़ास बनाते हैं जो हम रोज़ाना सुनवाते हैं आपको। बेहद ही खूबसूरत नगमे और दिल को छू लेने वाले लोकगीत इस प्रोग्राम की खासियत। चलिए इस वक्त हम कार्यक्रम का आगाज़ लीना शर्मा की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ करते हैं।

0: हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शिखरों के स्वर का आनंद ले रहे हैं आप FM शिमला पर। कार्यक्रम जारी रहने वाला है संदेश के बाद।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

तो हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप एफएम शिमला पर ले रहे हैं इस वक्त। देखिए, हिमाचली लोकगीतों का अपना ही ख़ास अंदाज़ है जो यहाँ की संस्कृति और भाईचारे को प्रकट करता है। ऐसे ही गीत जो हमारी संस्कृति और भाईचारे को दिखाते हैं, हम रोज़ाना सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में आपको। ख़ास मौक़ों पर लोगों का इकट्ठा होना और अपनी ही संवेदना को गीतों में परोना इस पहाड़ी संगीत को खास बनाता है। तो चलिए अब आनंद लेते हैं कुलराज किशोर भारद्वाज की आवाज़ में अगले लोकगीत का।

0: शिखरों के स्वर कार्यक्रम सुनते रहिएगा आप इस संदेश के बाद FM शिमला पर।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं,
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: शिमला ट्यून किया है आपने, शिखरों के स्वर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। लीजिए रमा सिंह की आवाज में अगला लोकगीत सुनिए।

लोकगीत सुन रहे हैं आप FM शिमला पर। देखिए, हर लोकगीत हमें सुनाता है एक कहानी जो रिश्तों के प्यार, प्रकृति की सुंदरता और हमारी संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। ये शब्द और धुनें वो होती हैं जो हर दिल को अपने ही रंग में रंग देती हैं। इन सुरों में छिपी है पहाड़ों की सादगी और जीवन की सच्चाई। वादियों की ठंडी हवा के साथ बहते ये गीत मन को एक अलग ही एहसास करवाते हैं जो सुख और शांति से भरे होते हैं। ऐसे हैं हमारे हिमाचली लोकगीत। तो चलिए, रीटा गर्ग की आवाज़ में अगला लोकगीत सुनवाते हैं आपको।

तो देखिए, पहाड़ों की वादियों से गूंजती सुरों की मीठी आवाज़ से ही है हिमाचली लोकगीतों की पहचान, जो देवभूमि हिमाचल की मिट्टी की खुशबू हर लोकगीत में बसाती है, जहाँ हर धुन में बसी है परंपरा और हर गीत में छलकता है पहाड़ों का प्यार। ऐसे ही लोकगीत हमारे इस प्रोग्राम की है शान। चलिए आखिरी लोकगीत सुनवाते हैं इस वक्त आपको रविदास की आवाज़ में।

0: तो चलिए जी, इसी लोकगीत के साथ अभी के लिए हम शिखरों के स्वर कार्यक्रम को देने वाले हैं यहीं पर विराम। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। अब दिन के 3 बजने वाले हैं, कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित होगा, जिसे आकाशवाणी के FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप ये समाचार बुलेटिन सुन सकते हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। इन चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्के नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। चंबा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले की 319 ग्राम पंचायतों में 3 चरणों में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियों के अलावा मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। मुकेश रिप्सवाल ने सभी पात्र मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है।
3: हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हर गांव के अंदर उपस्थित हैं। तो जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो कि 26 को, 28 को और 30 मई को अपने अपने स्टेशन पे जाके इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगी, तो जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग है, साथ में जो हमारे ARO हैं जो कि काउंटिंग के प्रोसेस को ओवरसी करेंगे, उनकी करंटली जो ट्रेनिंग है वो SDM लेवल पे इम्पार्ट की जा रही है। फाइनल ट्रेनिंग हमारी 24 तारीख को होती है, उसके बाद जो पार्टीज हैं वो अपना सामान मटेरियल लेके अपने पोलिंग स्टेशन के लिए मूव कर जाते हैं। पोलिंग स्टेशन पे मतदाता आते हैं, के लिए भी जो बेसिक वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज हैं, रैंप की उपलब्धता प्लस बिजली, पानी एक्सेट्रा, ये सब भी हर जगह पे सुनिश्चित कर लिया गया है।
2: उधर सिरमौर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 1,641 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में 54 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील और 268 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है।

0: इन केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।
1: हमारे टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो है 371,404, उसमें से पुरुष की संख्या 194,309 है, फीमेल है हमारे 177,09, और इसके अलावा हमारे टोटल पोलिंग बूथ हैं 1,641, हाइपर सेंसिटिव पंचायत पोलिंग स्टेशन हमारे 54 हैं, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हमारे 268 हैं, और जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है हमारे वो 1,319।
0: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। हर साल ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नगर निगम शिमला द्वारा छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राजीव गांधी के सद्भावना और विकास के दृष्टिकोण को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि उनके दूरदर्शी विचार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वहीं शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्था के लिए दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
2: आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य पे हम कांग्रेस भवन में भी और राजीव गांधी चौक पे भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने हमारी विजन दी है, यूथ को विजन दिया है। 18 साल का उन्होंने ही एक वोटिंग राइट यूथ को दिया था। महिलाओं को में उन्होंने 50% इलेक्शन और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विजन दिया था, और जो उनका विजन था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि किस तरीके से उन्होंने कंप्यूटराइजेशन करने की कोशिश, मॉडर्न इंडिया का विजन उन्हीं से स्टार्ट हुआ था और आज वो विजन कहीं इंप्लीमेंट हो रहा है और हिंदुस्तान में, जो उन्होंने आज से 30-35 साल पहले सोचा था।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए शिमला जिला की चिट्ठी। इसके लेखक हैं योगराज शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
4: मई का महीना जिला शिमला के लिए अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों, प्रशासनिक पहलों, सांस्कृतिक आयोजनों और जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए खास रहा। महीने की शुरुआत शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में पोटैटो वैल्यू चेन को मजबूत करना विषय पर आयोजित स्टेक होल्डर्स सम्मेलन से हुई। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से किसान, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और आलू उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने रसायन मुक्त आलू उत्पादन को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि अत्यधिक रासायनिक प्रयोग न केवल किसानों के स्वास्थ्य बल्कि मिट्टी की उर्वरता के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने टिकाऊ खेती और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। प्रदेश सरकार द्वारा हरित विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय परिसर से नगर निगम शिमला के 10 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया जिसने कचरा प्रबंधन के लिए अपने वाहन बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के उद्देश्य से ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी एक गंभीर घटना भी सामने आई जब रोहडू एसडीएम कार्यालय और अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। शिमला के भराड़ी क्षेत्र में धमकी भरे पोस्टर लगाए गए जिसके बाद पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। एहतियात के तौर पर एसडीएम कार्यालय और अदालत को खाली करवाकर तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। पुलिस ने सदर थाना में FIR दर्ज कर CCTV फुटेज और तकनीकी

0: साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी व जिला जनगणना अधिकारी ज्योति राणा की अध्यक्षता में बचत भवन शिमला में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला के 26 फील्ड प्रशिक्षकों को तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी और पहली बार स्वगणना प्रणाली लागू रहेगी। 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक मकान सूचीकरण व मकानों की गणना की जाएगी। शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र में भी जिला शिमला ने महत्वपूर्ण गतिविधियों की मेजबानी की। कोटशेरा कॉलेज और देश भगत यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, तकनीकी विकास और पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। राजधानी शिमला में छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 2 दिवसीय एमएसएमई मंथन मीट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने वर्चुअल माध्यम से किया। सम्मेलन में वित्तीय संस्थानों, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया तथा मार्केट एक्सेस, तकनीकी उन्नयन, वित्तीय स्थिरता और नीति सुधार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महासू आर्ट शिमला की 7वीं अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में हिमाचल सहित अन्य राज्यों के कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना रहा।
1: आप सुन रहे थे शिमला जिले की चिट्ठी। इसके लेखक थे योगराज शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

स्वागत एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का 103.7 MHz पर। देखिए 3:10 हो चुके हैं, ये समय रहता है ओल्ड हिट्स प्रोग्राम का। ओल्ड हिट्स प्रोग्राम जो पुराने धुनों पर आधारित रहता है कार्यक्रम, जहां हर धुन में बसता है सिनेमा का जादू, फिल्म संगीत के साथ बॉलीवुड के रंग सुरों का संग लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए ये खूबसूरत सफ़र ओल्ड हिट्स प्रोग्राम का। तो चलिए फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे जो मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी रह चुके हैं। हर फिल्म का गाना एक कहानी कहता है जो दिल तक, हमारे दिल से दिल तक पहुंचती है। चलिए आगाज़ बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: तो जी, इस वक्त आप FM शिमला पर ओल्ड हिट्स प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि जानते हैं आप कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में बाहरी राज्यों के लोग भी शिमला घूमने आते हैं ताकि शिमला के मौसम का आनंद ले सकें। ऐसे में ट्रैफिक जाम का सामना जो है वो आम जनता को करना पड़ सकता है। जब भी ट्रैफिक जाम का सामना आपको करना पड़े, ऐसे में थोड़ा सा सब्र और हिम्मत से काम लें और थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम सब अगर अपनी जो है पर्सनल गाड़ी का कम इस्तेमाल करें और इसके बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा महत्व दें, तो इससे हमारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। इससे ये जो है हमारा फ्यूल और टाइम दोनों बचेगा। यानी अगर हम घर से समय से पहले भी ना निकले, समय से भी निकले, तो भी हम अपने जहाँ पर भी हमें जाना है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हम टाइम से पहुँच सकते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और एक सभ्य नागरिक होने का जो है ये आप बताएं कि आप सभ्य नागरिक हैं। बहरहाल, अभी तो आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं और ओल्ड हिट्स कार्यक्रम सुन रहे हैं। बेहतरीन गाने आप सभी के लिए। अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

0: ओल्डीज कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा आप इस संदेश के बाद।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: तो देखिए जी, जो गीत आप सुन रहे हैं ये गीत गीत नहीं बल्कि दिल की बात है। हर गीत जो है अपने साथ एक कहानी बयां करता है, कभी प्यार की तो कभी जुदाई की और कभी खूबसूरत यादों की। इन नगमों में वो एहसास छिपे हैं जो आज भी दिल को सुकून देते हैं। जब भी हम इन्हें सुनते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा सा फील होता है और ऐसे ही नगमे हमारे प्रोग्राम को बेहतरीन भी बनाते हैं। चलिए, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनवाया जाए आपको, जो है किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: मेरे

पुराने फिल्मी गाने जो हैं हमारे दिलों की धड़कन, आज भी जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमें पुराने दिन याद आ जाते हैं, और अगर वो उनमें धुन भी मिल जाए तो देखिए क्या बात है। बॉलीवुड के नंबर जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं, हम कभी भी सुनिए, हम इसे कभी भी सुने, कहीं पर भी सुने, हमें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। खूबसूरत धुनों के साथ खूबसूरत शब्द और खूबसूरत लोकेशन, बेहतरीन एक्टर और संगीत, ये सब इन गीतों को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। तो ये था आज के ओल्ड हिट्स कार्यक्रम का सफ़र। अब इस सफ़र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 3:30 होने वाले हैं। अब युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युवानी का समय है, तो आइए सुनते हैं युवानी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी मित्र और होस्ट यामिनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है आतंकवाद विरोधी दिवस को। हर वर्ष 21 मई को पूरे देश में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों में आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना और शांति, एकता तथा मानवता का संदेश देना। ये दिन हमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद भी दिलाता है, जिनकी हत्या आतंकवादी हमले में हुई थी। उनकी स्मृति और आतंकवाद जैसी बुराई के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों, बातें यूं ही जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत।

प्रिय श्रोताओं, आतंकवाद केवल बम और बंदूक तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो नफरत, भय और हिंसा को जन्म देती है। आतंकवाद का सबसे बड़ा नुकसान है कि ये निर्दोष लोग और उनके परिवारों को जान गंवानी पड़ती है। बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ जाता है, परिवार टूट जाते हैं और समाज में डर का माहौल बन जाता है। जब किसी शहर में विस्फोट होता है, जब कहीं गोलियों की आवाज़ गूंजती है, तब केवल इमारतें नहीं टूटती, इंसानियत भी घायल होती है। भारत ने आतंकवाद की कई दर्दनाक घटनाएं देखी हैं। संसद हमला, मुंबई का 26/11 हमला, पुलवामा हमला, ये घटनाएं आज भी हमारे दिलों को झकझोर कर रख देती हैं। लेकिन हर बार हमारे देश ने साहस, धैर्य और एकता के साथ इन चुनौतियों का सामना किया है। दोस्तों, आज हमें उन वीर सैनिकों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को नमन करना चाहिए जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, तपती गर्मी, वे सीमाओं पर डटे रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उनके त्याग और बलिदान की वजह से ही हम आज चैन की सांस ले पा रहे हैं। आइए इस अवसर पर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

प्रिय युवाओं, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। यदि युवा जागरूक, शिक्षित और सकारात्मक सोच वाले हों तो कोई भी ताकत देश को कमज़ोर नहीं कर सकती। आज सोशल मीडिया का दौर है। कई बार झूठी खबरें, अफवाहें और भड़काऊ संदेश समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर किसी भी जानकारी को साझा करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान यही है कि वो शांति और भाईचारे को बढ़ावा दे। हमें ये याद रखना चाहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हर धर्म प्रेम, दया और मानवता का संदेश देता है। इसलिए हमें जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर केवल इंसानियत को महत्व देना चाहिए। महान नेता महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा मानवता का सबसे बड़ा हथियार है। सचमुच, हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। संवाद, समझदारी और प्रेम ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने आसपास शांति और सद्भाव का वातावरण बनाएं। यदि कहीं गलत बातें फैल रही हों तो उनका विरोध करें। यदि कोई व्यक्ति नफरत फैलाने की कोशिश करे तो उसे प्रेम और समझदारी से जवाब दें। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, आतंकवाद विरोधी दिवस केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये एक संकल्प है। ऐसा संकल्प जिसमें हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का वचन लेते हैं। आइए हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें, हम देश की शांति और एकता को बनाए रखेंगे, किसी भी प्रकार की हिंसा और कट्टरता का विरोध करेंगे, समाज में प्रेम, भाईचारा और मानवता का संदेश फैलाएंगे और एक जागरूक नागरिक बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत हैं कुछ प्रेरणादायक पंक्तियाँ। नफरत की बुझानी है, प्रेम की ज्योति जलानी है, आतंक मिटे इस दुनिया से, ऐसी दुनिया बनानी है। जहाँ दिलों में प्यार रहेगा वहाँ कभी अंधकार ना होगा, जब हाथ मिलेंगे इंसानों के तब आतंक का नामो निशान ना होगा। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, एकता

हमें ही शक्ति है। जब पूरा देश एक साथ खड़ा होता है तब कोई भी आतंकवादी ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां हर नागरिक सुरक्षित हो, हर चेहरा मुस्कुराता हो और हर दिल में प्रेम और सम्मान हो। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम के अंतिम गीत का।

दोस्तों, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और संगीत सुनते रहें। नमस्कार।

देखिए जी, संगीत की ये महफिल यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो दिलों में हमेशा गूंजती रहती है। उम्मीद है ये सुरीली सुहाने सफ़र आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, एक प्यारी सी याद बनकर ये हमेशा आपके दिल में रह जाएगी। तो चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब शाम के 4 बजने वाले हैं, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं तो हम अक्सर मूवीज़ में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड ज़ीरो, तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीज़ों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर के मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000

0: हजार 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
1: बिल्कुल,
0: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
1: जी,
0: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ। और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा, ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया। और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है, पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो वो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
1: बिल्कुल,
0: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
1: मतलब तो इतना बड़ा आतंकवादी, और इतना
0: बड़ा जी कि
1: सब
0: कि भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिसपे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी, और ये मौका मुझको मिला। BSF के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था, और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था 27 और 28 अगस्त 2003 को, एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
1: जी।
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जेएनके पुलिस, BSF का बड़ा अहम किरदार रहा। और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया, लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी,
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा, और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए, कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में 3rd फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11, लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को, हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पे गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही, और
1: बिल्कुल
0: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है, और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा, वो कैसे आप लोगों ने, आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ, जब फायरिंग हुई, फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई, जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं कहीं
1: कुछ बड़ा करना
0: है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए, और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी, इसलिए फैल गई

0: थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था,
1: बिल्कुल
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है, और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, कॉन्टिन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं,
1: जी,
0: मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को
1: डिजाइन किया।
0: बनाया था, डिज़ाइन
1: अच्छा
0: किया था, और बड़ा साइंटिफिकली डिज़ाइन किया था। उस ज़माने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे ज़ीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई।
1: जी
0: अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया, या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया, तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारी स्टेक पे था, और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली
1: ओके
0: सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका
1: जी
0: किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले, हमारे पर फायर करे,
1: या
0: हमारे
1: वो भागने की कोशिश करे।
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी,
1: अच्छा
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था। और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे,
1: जी
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। और थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया ये बेवकूफ़ बना दिया इन्फार्मर, शायद सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था,
1: अच्छा
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा है,
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था,
1: अच्छा।
0: पाकिस्तानी टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो
0: तो शायद
1: शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता,
1: ओके
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ
1: ओके
0: निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी।
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों,
1: अच्छा
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है, अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी

0: भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि BSF के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए,
1: जी
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी
1: जी
0: गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है, आँख
1: यानी कि
0: में।
1: आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया
0: हाथ
1: आप
0: का,
1: उस वक्त?
0: सिर्फ हाथ का
1: सिर्फ
0: अंदाजा
1: हाथ
0: हुआ,
1: का
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता
1: जी
0: नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा।
1: जी
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल
1: पता
0: टेबल
1: लगा
0: के ऊपर ही OT में पता लगा।
1: जी
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी
0: और
1: सर, हम
0: चले।
1: इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग, और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज़्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही ख़त्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में वो गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है, जो उसका ख़राब ब्लड होता है बैंक के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है और वाशरमैन ने

0: इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संग यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पे ड्राइंग रूम में लगा रखा,
1: जिसने
0: है
1: आपका दिल बचाया।
0: उसमें यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशन भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है, फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
1: फेंट हो जाता है, फिर
0: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
1: जी जी जी।
0: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं
0: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
1: जी,
0: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था, और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी

0: बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है, फिर वो
1: अच्छा,
0: शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है। फिर ये भी ख्याल आया
1: फेंट हो
0: कि
1: जाता है और फिर
0: हाँ, कि मैं
1: होश
0: अगर कुछ दिन
1: चले
0: बाद
1: जाते हैं।
0: मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन
1: जी
0: है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने
1: आने,
0: लगते हैं।
1: जी जी जी
0: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए,
1: जी
0: जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं हो पाई
0: एस्टेब्लिश नहीं
1: होगी
0: हो पाया, शिनाख्त
1: जाहिर है।
0: बाद में हुई,
1: जी
0: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल BSF मिले मुझसे,
1: जी
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा ऑल केम टू सी मी इन ICU, एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो,
1: जी
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना, मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा
1: जी
0: था।
1: जी
0: मैंने कहा सर फॉर वॉट? बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, एंड होल कंट्री, होल नेशन एंड BSF इज प्राउड ऑफ यू
1: क्या
0: एंड
1: बात
0: बी
1: कर
0: एस
1: रहे
0: एफ
1: हो।
0: टीम। तो वो ऐसा रहा ना, सारा दर्द काफूर हो
1: हाँ,
0: गया।
1: खत्म हो गया, सही
0: मतलब
1: कहा
0: नहीं
1: आपने।
0: लगा कि दर्द में तो हम थे,
1: जी
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी
1: बिल्कुल
0: पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट
1: सक्सेसफुल,
0: होता है, अगर आप
1: बिल्कुल
0: फाइनल फतह कर लेते हैं,
1: जी।
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना,
1: हाँ,
0: वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो
1: कम
0: जाता
1: हो
0: है।
1: जाता है,
0: हाँ,
1: यस,
0: ये
1: उसका
0: है
1: एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो
0: एग्जैक्टली
1: अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी
0: इतनी
1: थी
0: बड़ी थी।
1: कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल
0: हाँ
1: होगा।
0: बिल्कुल, ही वाज ए ड्रीम चेज फॉर एवरी
1: एग्जैक्टली
0: फोर्सेज, ही
1: बिल्कुल
0: वाज ए हॉट
1: बिल्कुल।
0: केक इन द वैली।
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो
0: कर ही रहा
1: अपने
0: था
1: नमूने
0: फॉर
1: पेश
0: मोर देन
1: करता।
0: 9 ईयर्स वैली में, 1994 से 2001 तक ही वाज ऑन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC 814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस साड़ीमर्ग किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001,
1: बिल्कुल, मतलब
0: पार्लियामेंट
1: अनगिनत
0: पार्लियामेंट
1: पार्लियामेंट
0: अटैक
1: अटैक,
0: 13 दिसंबर 2001
1: कितना
0: हजार
1: बड़ा,
0: एक
1: बिल्कुल
0: तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा
1: बहुत,
0: अचीवमेंट थोड़ी है,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: भी
1: बहुत
0: दिन
1: बड़ी
0: में
1: बात।
0: 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है,
1: जी
0: परिंदा नहीं पर मार सकता। तो इतना बड़ा प्लानर
1: इतना
0: था,
1: बड़ा प्लान है, इतना बड़ा
0: पाकिस्तान से
1: आतंकवादी।
0: लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के,
1: जी
0: लॉजिस्टिक्स वेपन ID एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस
1: बिल्कुल
0: और पार्लियामेंट्री स्टाफ की, उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के। और उसमें 13 लोग शहीद हुए, जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी
1: बहुत
0: थी,
1: बड़ी, बहुत
0: और
1: बड़ी सर।
0: बहुत
1: यहां पर
0: BSF का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सतमस्तक ऊंचा हुआ।
1: बिल्कुल। और सर, इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
0: मैं
1: क्योंकि
0: इसको
1: ये
0: अपॉर्चुनिटी
1: डेयर
0: मानता
1: डेविल।
0: हूँ, क्योंकि
1: जी
0: BSF एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के, उस
1: बिल्कुल
0: फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम
1: सर,
0: जाना
1: वो जो एक
0: चाहिए।
1: फौजी का जो एक जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला, देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर
0: क्या है कि
1: जिस।
0: जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं।
1: जी
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए,
0: थरथराए,
1: जी
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा।
1: बिल्कुल,
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती
1: तो
0: है।
1: आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से
0: एग्जैक्टली, नहीं तो
1: जिम्मेदारी
0: मैं
1: और
0: उस दिन
1: भार।
0: बटालियन का हेड था,
1: जी
0: मेरे
1: आप लीड
0: पास
1: कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था, मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन
0: लेकिन
1: आप फ्रंट पर
0: खुद
1: रहे।
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल,
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
1: मौत
0: जाता
1: के मुंह में
0: है,
1: घुस गया।
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल।
0: गाजी बाबू के माद में घुसना कोई सिंपल
1: और
0: चीज
1: जैसा
0: नहीं
1: आपने
0: थी,
1: बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं हमको।
1: मिलता नहीं,
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी
1: जाने,
0: जिंदगी खुद को कोसते
1: बिल्कुल
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स।
1: दुबे सर। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक

0: आज इसको नाकाम किया है और करेंगे। हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
1: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
0: और सर, ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से। सर, आई सल्यूट फॉर योर करेज। यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ। योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
1: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज वी स्टिल रिमेम्बर दी ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बाडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी स्काडर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है। सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन एंड इन दुबे सर को, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है। आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
1: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
0: जी,
1: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है। ये वर्ड उनके थे।
0: अच्छा।
1: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
0: जी जी बैज
1: बच्चन, हाँ
0: अच्छा जी,
1: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
0: जी,
1: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है।
0: वो आपकी यादगार,
1: आप में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी। मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
0: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
1: फिल्म
0: अनबिलीवेबल,
1: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
0: बिल्कुल
1: है।
0: सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
1: होते हैं।
0: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता,
1: वहां
0: जान जाएगी या जान ली जाएगी।
1: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है
0: या मरने का
1: तीसरा कुछ नहीं होता,
0: तीसरा कुछ नहीं। या तो
1: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
0: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं।
1: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
0: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर, मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से।
1: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
0: जी,
1: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक के क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट।
0: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
1: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बी के दत्त है
0: जी,
1: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है, तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच
0: सर। देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए BSF में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं।
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: मैसेज
1: आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें तो।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: जस्ट आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब BSF आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालय नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: होती थी।
0: yes. अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज़्यादा था
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गाँव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और 1 साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े ज़बरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पर बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं। ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे।
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल हैं, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
0: ठीक है।
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाई मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल।
1: और 6 देशों के साथ

0: भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है,
1: बिल्कुल,
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है,
1: मिलता है,
0: विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
1: जी,
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से
1: जी।
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
1: जी,
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में सरकारी,
1: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए उसके अलावा,
0: उसके अलावा ये 9 वर्ष NIA में,
1: अच्छा,
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा,
0: मेरे दिल से लगा हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
1: अच्छा,
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है,
1: कोर एरिया है,
0: जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
1: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, FM रेनबो की ऑल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
0: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
1: जी,
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
1: जी,
0: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी,
1: बिल्कुल।
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी
1: okay.
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
1: जी।
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में
1: जी, जी, जी।
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी। सर, एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये। DIG नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर हैं कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप। नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है।
0: क्या बात है,
1: क्या बात। नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप जज्बाती हैं,
1: बिल्कुल
0: प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
1: और सर, यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है, तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
0: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ पर्पज हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं, तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। 5 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं मंडियाली गीत। अरुण प्रकाश की आवाज में आपको सुना रहे हैं ये लोकगीत।

मंडियाली गीत अभी आपने सुने 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है पंगवाली कार्यक्रम।

आकाशवाणी शिमला दिल दी पंगड़ी की डी मंडा 30 सेकंड पर पेश होते हैं मन पसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले सभी जने ब्रह्मदत्त शर्मा तरफा दिल दी नमस्कार।

जी तो शून्य बड़े अखबार फिर दिन सुबह के स्वागत है। स्वागत का जरा भी है कार्यक्रम शून्य लगोरे भले इसे रेडियो पोट मोबाइल पोट चलती मोटर कार अंतर सुबह के अखबार स्वागत है। कार्यक्रम अंतरस बदेन लोकगीता ते आज कण जे कलाकार है से विनय अवरोल राज प्रभाकर उमा तनवर तथा तने साथी की आवाज़ अंतरस बदेन लोकगीत से सुनाने ही सुनाने है। लेकिन कार्यक्रम में शुरुआत जे आई तो आज कण खास समाचार जे करनी है और साथ ही साथ हमसे गल ये भी लानी है कि जे आजकल पंचायत चुनाव के दौर चलो रहा कि वोटे की महत्व है और लोकतंत्र बुनियाद किस तरीके से बननी है तैसे वोटे भी हमसे गलबात करनी है और पहंगे जे जुड़ोरी भी गलबात हमसे करनी है कि बौद्ध धर्म और दठनी जे गोम्पा आई तनी इतिहास की है तैसे वोटे भी हमसे गलबात करनी है। कार्यक्रम में शुरुआत जे अस्थित से आज गणे समाचार जे करनी है। प्रदेश अंतर 4754 ग्राम पंचायती के अंतर 26, 28 और 30 मया जे तीन चरण अंतर भुने वाले जे चुनाव है तने प्रचार जे त लगातार जे जारी है। इन्हें चुनाव दिस अभियान प्रत्याशी आपो आपो संबंधित क्षेत्रों जे मतदाती रिझाने दे भरपूर प्रयास लौरे कने पहले चरण जे मतदान अस्था से पोलिंग पार्टियां 24 तथा 25 मया रवाना हुई गई है और साथ ही साथ जे चुनाव अंतर 50,69,048 मतदाता जे त अपो अधिकार प्रयोग करना है जथंतर की 25,67,770 पुरुष है जथंतर की 25,11,249 महिलाएं शामिल हस्ती। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जे चुनाव जे तसे प्रत्येक पद अलग अलग रंग करीब 60 लाख मतदाता मतपत्र जे तसे छपो रहे है। पंचायत सदस्यों दिए सफ़ेद रंगे और उप प्रधान दी हल्का पीला रंग और प्रधान पद दी हल्का हरा रंग है। पंचायत समिति उम्मीदवार दी गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार दी हल्के नीले रंगे मतपत्र जेता से निर्धारित किया रहा। चुनावे जे तैयारियां है और चंबे जिले जे पंचायती राज संस्थाएं के जे चुनाव जे तसे सफलतापूर्वक संपन्न कराण दी प्रशासन द्वारा जे तैयारियां है इसे अंतिम रूप जेतने दी छोड़ो रहा। जिले अंतर 419 ग्राम पंचायती के चीन चरण अंतर जे चुनाव जे तसे भुणे आई। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उपायुक्त मुकेश रेपसवाल तने बोलू कि पंचायती राज चुनावी के जे शांतिपूर्वक ढंग जे संपन्न करवाने जे तसे तैयारियां जारी कर छोड़ी। साथ ही साथ तने ये भी बोलू कि मतदान केंद्रीय अंतर जे पोलिंग पार्टी है तस्के अलावा मतदाता जे अस्ते तस्से सुविधाएँ सुब जे तने मूलभूत सुविधाएँ जे तसे उपलब्ध भी होनी है। जसंतर की जे संबंधित विभाग अस्ते तने निर्देश जे तसे दी छोड़ रहे। मुकेश रेपसवाल तने ही बोलो कि जे पात्र मतदाता अस्ते और तने लोकतंत्र अंतर लोकतंत्र एस महापर्व अंतर बढ़ चढ़ करके भाग लेने अपील।

केरी। आज जयत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी आज जयत से 35वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 अंतर तमिलनाडु श्री पेरम्बदूर अंतर आत्मघाती हमले अंतर धन्य हत्या कर छोती थी और हर साल एज दिन अस्ता से सद्भावना दिवस से तौर पुठ जेता रूप पुठ जेता से मनाईता। नगर निगम शिमला छोटा द्वारा तथा छोटा शिमला जे स्थित सद्भावना चौक अस्ता तट राजीव गांधी जे प्रतिमा है तट पुठे पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि कार्यक्रम जेता से आयोजित हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित जे गणमान्य मैन थे तन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रतिमा पुठे श्रद्धा सुमन जे तसे अर्पित किए और देशे एकता तथा अखंडता दी शपथ ली। इस मौके पुठे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिले बोलू कि राजीव गांधी जे सद्भावना और विकास दृष्टिकोण पुठे देश जे तसे तन्हें हमेशा याद करता। तने ये भी बोलू कि जे दूरदर्शी विचार वाली जे तने सोच थी से ईणे वाली जे पीढ़ी अस्ती तद्दी जैसे प्रेरणा स्रोत जे तसे रहने आई। साथ ही साथ तने ये भी बोलू कि शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन अंतर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जे पुण्यतिथि पुठे श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पुठे विधायक हरीश जनार्था तने बोलू कि राजीव गांधी जे सूचना तथा प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्थाएं दी तने योगदान जे तसे हमेशा याद रहनास्ता। उरे प्रदेश अंतर जनगणना 2027 पहला चरण जे तसे 16 जून के जे तसे शुरुआत हुई गई। पहले अंतर जे ता 15 जून तकरे ऑनलाइन माध्यम जे देश से दर्ज होनी है जानकारी। राज्यपाल कविंदर गुप्ता तने बोलू कि भारत श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत जे भारतीय कार्यक्रम भारत कार्यक्रम अस्ता देश अंतर एकता तथा अखंडता दी जे ता अंतर मजबूती हथियण गोरी। मुख्यमंत्री गुणवत्ता शिक्षा दी प्रदान कन दी हिमाचल जे तसे देश अंतर छठों स्थान जे त मिलन पुठे प्रसन्नता जतौरी और जे अध्यापक हस्ते तथा कर्मचारी है तन्हें जे तसे बधाई दुतौरी। अथी कुछ प्रदेश खास समाचार बजे लोकगीत विनय अवरोले आवाज अंतर सुने लोकगीत फिर लोन थे जे होरी गलबात।

विनय अवरोले आवाज़ ने तुरबे देने लोकगीत हैं सुनने वाले सुनो जरूर चाव नियर होना सुनने वाले में तुझे गल लान लो थे कि दौर जे था पंचायती चुनाव के चलो रहा था लोकतंत्र अंतर ऐसे जे वोटे जे महत्ववस्था लोकतंत्र अख बुनियाद आई। देखो जी पंचायत चुनाव अंतर वोटे जे महत्ववस्था और खास करके जे महिलाएं आई तने भागीदारी जी आई तो लोकतंत्र अंतर जमीनी स्तर पुठे मजबूत बनाने दिया महत्वपूर्ण स्तंभ आई। देखो भारत जने विकासशील देश अंतर जड़ी आत्मा जे तसे ग्रह अंतर बस्ती और स्थानीय शासन जसनो क्या पंचायती राज बोते सीधा असर जे त महना पुठे जे तसे ने दैनिक जीवन पुठे जे तसे पड़ता। पंचायत चुनाव अंतर हर अख वोट जे अस्ता तसे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अस्ता और जड़ी की मतदाता और उम्मीदवार बचे सीधा संपर्क जे तसे भूनता। ऐसे लिए अगर सपू वोटे अगर सही इस्तेमाल करना है और तसे जवाबदेह प्रतिनिधि चुनने अंतर निर्णायक भूमिका जे तसे निभाता। जे स्थानीय विकास अस्ता अगर सही उम्मीदवार अगर चुनियल तब वोट जाए तो ग्रह अंतर खास करके सड़क आई पानी आई बिजली आई शिक्षा आई स्वास्थ्य आई अजनी बुनियादी जे सुविधाएं आई तसे दिशा जे तसे तय करती। इसलिए एक वोटे कीमत जे तसे मतलब नक्शा बदली सकती से जो जे हैं अधिकार अस्ते तसे रक्षा सजग मतदान करके जे भ्रष्ट तथा अयोग्य मैन अस्ते तना सत्ताई क्या बिल्कुल बैर कर सकते। साथ ही साथ जे सरकार अस्ती तन जे सरकारी योजनाएं अस्ती तन्हें लाभ जेता जरूरतमंद में हणा तो कर पुजाना जेता इन्हें प्रतिनिधि के कम अस्ता। जमीनी लोकतंत्र अगर गल कि अजय चुनाव अस्ता जे हैं नागरिक हस्ते तन्हें जे आपू किस्मत खुद बदलने और स्थानीय नीति के जे सीधे हस्तक्षेप करने अधिकार भूनता। महिला भागीदारी सशक्तिकरण अंतर बदलाव कनु के इंता कि भारतीय संविधान अंतर 73वें संशोधन अंतर पंचायत अंतर पंचायती अंतर जे महिलाएं अस्ती तहन दी न्यूनतम जे 33% या कई राज्य अंतर 50% आरक्षण भी जे तसे ग्रामीण राजनीति रूप जे तसे स्पष्ट करती और एज ए रेखा जे तसे कस हिसाब बदली थी जे है नेतृत्व विकास अस्ता खास करके जे आरक्षण अगर गल लें तो आरक्षण दे जे कारण जे आई तसे आज लखों महिलाएं जे आई ता घूंघट तथा जे घर रस्ता तसे चार दीवारी बहरी निस करके से सरपंच बन लगोरी प्रधान बन लगोरी वार्ड सदस्य बन लगोरी और साथ ही साथ अपू पूरे नगर कबीले जे आई तसे नेतृत्व जे आई तसे संभालने लगोरी बड़े अच्छे तरीके से संभालने लगोरी और बड़ी बढ़िया गल अस्ती जे संवेदन

शील मुद्दे आस्ते खास करके महिला जनप्रतिनिधि आस्ते अपुग्रांतर महिलाएं के जैसे सुरक्षा आए या बाल विवाह आए या फिर स्वच्छता आए और पोषण और शिक्षा जिने संवेदनशील मुद्दे उठे अधिक संवेदनशीलता जे आपको प्राथमिकता जैसे कम करने को अगर महिलाएं अगर ये ली और महिला जनप्रतिनिधि अगर ये ली तो अजय चीज़ें अस्ती खास करके महिलाएं के सुरक्षा जे जुड़ो रही और बाल विवाह और स्वच्छता पोषण और शिक्षा इन्हें मुद्दे उठा अगर कम करें तो ग्राम विकास होना आए और पंचायती विकास होना आए प्रदेश विकास होना आए देश विकास होना आए और साथ ही साथ अख महिला जे अस्तिता से पंचायती नेतृत्व गति अख पंचायती नेतृत्व गति लेकिन जे समाज अस्ता इन्हें वाली पीढ़ियाँ दी और अख प्रेरणादायक बन गई थी से और जे हैं समाज अंतर खास करके जे पितृसत्तात्मक जे सोच अस्ती है ना जे और तस चीज़ से सोच जे तसे कमज़ोर हो सकती जो ये पंचायत चुनाव अस्ते महिलाएँ अब वो सक्रिय रूप जे मतदान करें और चुनाव लड़े दुहियो जे समाजे समग्र विकास दी जे आई ता बिल्कुल बड़े बढ़िया काम आस्ते और अनिवार्य।

हैं समाज अंतर, खास करके जे पितृसत्तात्मक जे सोच अस्ति है ना जी, और तस चीज से सोच जे तसे कमजोर हो सकती। जो ये पंचायत चुनाव वास्ते महिलाएं अब वो सक्रिय रूप जे मतदान करे और चुनाव लड़े, दुहियो जे तो समाजे समग्र विकास दी जे आई ता अब बिल्कुल बड़े बढ़िया काम वास्ते और अनिवार्य भी है। जड़ी महिलाएं अपू वोटे ताकत समझ करके निर्णय नैंती कि अख सच्चे समावेशी और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत का हिसाब बने, अख आदर्श ग्राम कनु के बने, ऐसे जे निर्माण आई ता ही संभव हो सकता अगर अस घर के बाहर नहीं चले और सही और गलते पहचान करे कि अस वोट जे तो सही दिशा अंतर दिए तो ग्राम विकास होना है, पंचायती विकास होना है, प्रदेश विकास होना है, देशे विकास होना है। तो इसलिए जागरूक मतदाता बन करके सही चुनाव जे तस्या से अगर इन चाहिए, खास करके महिला जनप्रतिनिधि जे अस्ते से ग्रांतर महिलाएं के सुरक्षा और बाल विवाह और स्वच्छता और पोषण शिक्षा जने संवेदनशील जे मुद्दे अस्ते अनपुठे बढ़िया काम जे तसे भूं सकता। मौके गलती में तुहें जलाई राज प्रभाकर आवाज अंतर्वेदन लोकगीत है, तो सुने लोकगीत फिर लें तुहें जो हरी गल बात।

राज प्रभा करे वाजंत्र बदेन्यु लोकगीत हैं सुने बाड़े सुनो जरूर आनंद नियर बोना सुने बाड़े में गल लाण लो थी थे खास करके जे हैं पांगी घाटी अंतर जे बौद्ध धर्म अस्था और तठनी जे गोम्पा आई तठनी इतिहास बारे से गल लाण लो थी कि पूरे आपू अनूठे इतिहास जे बौद्ध धर्म जे ता गहरी जड़ियाँ जे जानीता खास करके जे हैं पीर पंजाल जे रेंज अस्ते जास्कर पर्वत श्रृंखला तत्पछे स्थित सुदूर घाटी बौद्ध इतिहास जे ता सदियों पुराना आस्ता जैसे कि मुख्य रूप जे अगर अस गल खास करके हैं जे पैंगई उपमंडल तहसील जे अस्ती एड़ी प्रमुख जे ता पंज बौद्ध बस्तियाँ अस्ती पंज भटौरियाँ आई कहने मतलब सुराल भटौरी हुडान भटौरी चसक भटौरी परमार और हिलुटवान भटौरी एजे पंज ग्रां अस्ते काफ़ी हाइट पुट है काफ़ी ऊंचे स्थान पुट भी निवास आस्ता और पैंगे घाटे जे जुलोरी अगर गल लूँ कि बौद्ध धर्म और गोम्पा जने नौ मठ बोल सकते तड़ी गोम्पा बोते ऐसे जे निर्माण आस्ता तैसे इतिहास ऐतिहासिक रूप जे लद्दाख लाहौल और जास्कर जम्मू कश्मीर जे क्षेत्र आस्ता खास करके भोट समुदाय ऐसे जे प्रवासन आस्ता तत् जे जुलोरा इतिहास आस्ता सदियों पहले अगर बौद्ध भिक्षु खास करके व्यापारी बनी करके ऊंचे पर्वते दर्रे पार करके तिब्बत और पड़ोसी बौद्ध राज्य जे जुड़ी करके व्यापार तथा धार्मिक आदान प्रदान जे तसे होता रहता सुरक्षाई और साधना दिए तने जे तक घाटी बड़े सुदूर कोणे पुट घाई करके जे गोम्पा थे तने स्थापना की और अपु ध्यान साधना जप मंत्र पाठ उच्चारण जे तसे तने तड़ी तसे स्थापना की और जे भटौरी आई तड़ी जे गोम्पा बड़ोरे तने जे शाही संरक्षण कैसे सावे क्या जे हैं चंबा रियासत हस्ती तसे इतिहास अगर गल भनौदी गोम्पा विशेष रूप जे उल्लेखनीय आई तसे उल्लेख हथीन ता से इन मनते कि जे इतिहासकार हस्ते कि सन 1919 अंतर जिखें चंबे जे राजा थिया राजा राम सिंह तने पैंगे दौरा किया और तने जे तब भनौदी बौद्ध गोम्पा जे तक खास करके खम्पा समुदाय जे तते धार्मिक अनुष्ठान जे तब बेहद प्रभावित हुए तने अनुष्ठान हेरी करके बौद्ध खम्पा समुदाय अथंतर जे तक गोम्पा छोटी गुफाई रूप जे तने बनौर थिया राजा अपू उद्दारता हुरालते हुए तने के काम किया तय बड़ा दस्तपुट वही आई गया कि बौद्ध भिक्षु जे तने भूमि दान देनी चाहिए भाई जथंतर की तड़ी अख भव्य और अख नया जे गोम्पा तसे निर्माण भुआ गोम्पा जे वास्तुकला अस्ती तड़ी लकड़ी जे नकाशी है प्राचीन दीवारें खास करके थांका पेंटिंग्स जे अस्ती तने जे उकेर हो रही है लद्दाख और तिब्बती कला तिब्बती जे कला अस्ती तसे स्पष्ट छाप जे तड़ी हेने दी हदीन दी असे जे गर्भगृह अस्ता गुरु पदम संभव अख अद्वितीय और विशाल प्रतिमा जे तसे स्थापित किए रही साथ ही साथ अने गोम्पिया अंतर जे खास करके जे हैं पैंगे जे पांच ग्रां अस्ते विभिन्न गोम्पा न केवल पूजा स्थल दी आई बल्कि बौद्ध शिक्षा और तंत्र मंत्र साधना दी भी है प्रमुख केंद्र अस्ते तड़ी दिन है जे खास करके धर्म गुरु लामा लोग बिजते और अगर चसक भटौरी गल करूँ प्राचीन जगह के अगर कड़ी स्तूपी के अगर गल करूँ मठ के अगर गल करूँ तो तड़ी जे तब चसक भटौरी जे तब मुख्य गढ़ जे तठनी मनीता जे इन्हें बौद्ध समुदाय जो लोग रहते वर्तमान अंतर जे हैं पैंगे घाटी अस्थी से खास करके गोम्पा और हिंदू तथा बौद्ध समुदाय बच्चे आपसी धार्मिक सौहार्द और अनूठी पंगवाल संस्कृति जे तड़ी हैने दी हदीन दी कठिन भौगोलिक परिस्थिति के कारण जे समृद्ध विरासत अस्ती बड़े लंबे समय के दुनिया की दुनियाई नज़र अंतर बड़ी छुपी जनी जगह अस्ती और बड़े दूर सुदूर पीर पंजाल और जांसकर रेंज अंतर विश करके अब ध्यान साधना मगन आई और लेकिन आज जे पर्यटकी के जे खास कर

के टूरिस्ट हस्ता तने इतिहासकारी के आज ये प्रमुख आकर्षण जे इतने से बनी चुको रहा। कहने मतलब ये कि कोई भी जगह जे इतना टूरिस्ट के यहाँ नहीं छुटोरी, जे पर्यटक हस्ते दूर दूर के यहाँ जे इतना पूरे देश प्रदेश के यहाँ पूरे विदेश के यहाँ भी मैं जे इतना तने जगह यहाँ हिंदी रे और तथनी जे खास करके वास्तुशैली है कला है और चित्रकला हस्ती तने बारे पूरी जे इतना जानकारी कौन सी लिपि आई टांकरी आई बुद्धि भोटी लिपि आई तो इन्हें चीज़ें पुट जे इतना अनुसंधान भूण गोरा रिसर्च भूण गोरी खोज भूण गोरी कि कखें जे इतना ऐसे इतिहास हालांकि बड़े बड़े विद्वान जानकार जे इतना तैयारी पूजी करके तेने जे इतना नैने पुठे कम करना जे इतना से शुरू किया और जे बौद्ध समुदाय जो लोग तड़ी हस्ते तने गबर तड़ी बिश्ते शिक्षा दीक्षा नहीं करके इसे दठान जाए तो फिर अलग तस्कियाँ बड़े स्कूल जाए तसे अपो दाखिला करते और खास करके मंत्र साधने अंतर जाए तसे बिल्कुल मग्न रहते। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम में निछोटी जे गीत अस्तु उमा तनवरे आवाज यंत्र सुनेस लोकगीत।

बंगवाली कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी शिमला और FM शिमला पर प्रस्तुत है लोकगीत सबसे।

我所立。

लोकगीत प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर निगम महापौर और सहब कर्मियों के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कर्मचारियों को लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सहमत मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
1: जो इनकी डिमांड्स थी उसको हमने 10% की वृद्धि को भी माना। EGM 4 जून को होने तय हुई है, उसको हम उसमें फाइनल करेंगे। एक डिमांड ये भी आई जो हमारे कर्मचारी सुपरवाइजर जिनको टर्मिनेशन का लेटर इशू हुआ है कि वो किया जाए, उसमें मैंने लिखा है और उसको मिश्र साहब को भी भेजा है साथ साथ कि आप इसको जो भी इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिवोक भी किया जाए। हमारा एक पारिवारिक एक मसला जिस तरह से होता है उसको बैठ के हमारी सारी चीज़ें सॉल्व हुई।
0: दूसरी ओर सहब सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत ने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद अब कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे।
2: हमारी जो मेयर साहब के साथ सहमति बनी हुई है कि जो 10% है वो मेयर साहब की तरफ से क्लियर है कि हम देंगे, पर इसे जो है AGM में ले जाना पड़ेगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो रोड स्वीपिंग स्टाफ है, उनको 4/9/14 नहीं लगता था, उसके लिए भी इन्होंने हम ही भर दिया कि वो भी हम जो है इसको कर देंगे। और साथ में स्पेशल लीव जो मिलती थी हमारे को 15 डेज की, वो भी जो है इन्होंने हम ही भरी है कि इसको भी हम दोबारा चालू कर दे। और जो हमारे 41 लोग टर्मिनेट किए गए हैं उनको भी जो है मेयर साहब ने यहाँ से लिख के भेज दिया है कमिश्नर साहब को, इनकी सेवा जो है कल से शुरू की जाए और कल से जितने भी सहायक कर्मचारी है वो अपने अपने कार्य पे जाएंगे।
0: गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुंदूर में आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। हर साल ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नगर निगम शिमला द्वारा छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राजीव गांधी के सद्भावना और विकास के दृष्टिकोण को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि उनके दूरदर्शी विचार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वहीं शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्था के लिए दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने रेणुका जी बांध प्रबंधन पर विस्थापितों की मांगों को लगातार अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांध प्रबंधन ने NGT के आदेशों को दरकिनार करते हुए सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू किया और NGT की शर्तों को भी पूरा नहीं किया। योगेश ठाकुर ने कहा कि रेणुका जी बांध प्रबंधन विस्थापितों पर जबरन कई शर्तों को थोप रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
3: रेणुका बांध में जो हमारे विस्थापित व इफेक्टेड जो हो रहे हैं उनके साथ जो है पिछले 17 सालों से अनदेखी की जा रही है, तो हमारी मांग यही है कि NGT के मापदंडों को जो हमारा बांध प्रबंधक है उसको फॉलो करे, जो भी है कंडीशन है ये इसको हटाया जाए और बिना कंडीशनों के हमारी जो हाउसलेस के लिए जो भी हमें पैसा मिल

0: है वो बिना कंडीशनों को हमें मिले।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम।

मीडियम कने FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी दे शिपला केंद्र है। संजय छे बज के 6 मिनट होए हैं। ए समय है कांगड़ी कार्यक्रम का।

नमस्कार, राम राम। हाजिर है अश्विनी कांगड़ी कार्यक्रम लेकर। श्रोते हो, जिहड़ी जिंदगी असां जी करदे हन उससे अलग एक होर जिंदगी है जिस जो असानी जीना लैना चाहते पर उस जो जीने ते डरदे हन। इसका कारण है कि इस जिंदड़ी असां ताई कई उम्मीदां पैदा कर दियां हन। उन्हां च है हारने कने जितने की उम्मीद। स जिंदगी कई उम्मीदां सोगी एक मुश्किल रस्ते ते होई करी गुजरदी है। ता ही तत लोग सौखी कने पक्कियां रस्ते पर चलने वाली जिंदगी जिहड़े एक अलग दुनिया के सुपने से संजोंदे हन जिन्हां जो सिर्फ सुपने च ही जे जींदे हन। से सुपने की जिंदगी ते बाहर नहीं आना चाहते। यह सह जिहड़ी मैं जिंदड़ी तो गल की सह है सुपने की जिंदड़ी कने असली कने नकली से फर्क नहीं करी पाते। ठीक है जी, अज मनाया जा करता है आतंकवादी विरोधी दिहाड़ा। यह दिहाड़ा हर साल 21 मई जो मनाया जाता है। तमिलनाडु के श्री पेरमदूर च 21 मई 1991 जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद इस दिहाड़े जो मनाने का फैसला लिया। दिखा जी 21 मई जो उतु हुए बम धमाके च श्री राजीव गांधी समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी। कहने इस दिहाड़े पूरे देश के माण जो एक सोच चुकाई जाती है सद्भावना दिवस के रूप से दिहाड़ा मनाया जाता है। कने अस सारे प्रकार के आतंकवाद कने हिंसा का डटी करी विरोध करके ये सोच चुकाई जाती है। ये दिहाड़ा आतंकवाद लोगों कने राष्ट्र पर इस दे असर के बारे चेतनगी फैलाने ताई जी है मनाया जाता है। इस दिहाड़े जो मनाने का मकसद समाज शांति एकता सद्भाव जो बढ़ावा देना है। कने ये दिन याद कराता है कि आतंकवाद पूरे समाज ताई एक बड़ा जे खतरा है। दिखा जी ये दिहाड़ा लोगों जो एक दूजे सोगी आतंकवाद के खिलाफ खड़ोने आवाज़ चुकने ताई जे है प्रोत्साहित करता है। कने ये दिहाड़ा आतंकवाद का मुकाबला करने ताई अंतरराष्ट्रीय सहयोग कने तालमेल की जरूरत जो भी बढ़ावा दिता है। यह आतंकवादी हल जो हमले होंगे जो बेकसूर लोगों कने पीड़ित जो जो जितों मौत हुई उन्होंने श्रद्धांजलि देने का जो दिन है। चेतनगी फैलाने ताई इस दिहाड़े जो अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कने आतंकवाद विरोधी दिहाड़ा केवल देश शांति एकता कने मानवता का भाव बनाई कर रखने कने आतंकवाद के पीड़ित लोगों की याद जो है ये दिहाड़ा मनाया जाता है।

ये आवाज़ थी अंजना कुमारी जी। श्रोते हो हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि यानी दणिया देवतियां की स्थली भी गलांदे हैं, इस नाँ ते जाने जाता है। चाहे कांगड़ा जिला हो, चंबा हो, मंडी हो या हरेक जिले च दणिया देवतियां का वास हुंदा है। उन्हां दी कोई ना कोई कहानी पुराने समय से सुनने जो मिलती है। कोई ना कोई मंदिर अपनी कथा सुनांदा है, अपनी कथा बयान करता है। उन्हां विच एक है बाबा कमलाइया दा मंदिर, जिहड़ा जिला मंडी मुख्यालय से 101 किलोमीटर दूर है। कने ये मंदिर जिला मंडी के धर्मपुर उपमंडल के 15 किलोमीटर से दूर कमलागढ़ च जे है

0: बसे कहंदा ओयो गरी मेरा है टोल गिरी पर बते पे पापा बालक।
1: कार्यक्रम जो वकी पढ़ांदे होए गल करनी असां कुटीर उद्योगों की महत्ता के बारे च। देखा जी कुटीर उद्योग यानी छोटा मोटा कम धंधा कारोबार करने से है जिसका स्वामित्व कने संचालन कुसी माणू या टबरे द्वारा जे किता जाता है। कुटीर उद्योग घटे से घट पैसा ने शुरू किया जा सकता है कने ये उद्योग धंधे ग्राएं दे इलाके च कमाने का एक खास जरिया है। कुटीर उद्योग विकासशील देशों च लोगों योग गरीबी के उपर चुकी करी उन्हों का स्तर होर खरा करने जे है मदद करते हैं। देखा जी कुटीर उद्योग अते नए बनिया चीज़ों का उत्पादन करते उन्होंने बनाते हैं जेडे उन्नत अर

जुले नमस्ते गी स्तंजन अंगमो इनी हिंची पछाई दो आकाशवाणी गी थे गर्जपई प्रोग्राम दो तिमरिल नंग यंपो स्वागत लिखत थन्यत कार्यक्रम दो होश में ग्यूनशी फेस बोंटे फेके थजुखा बोंटे हेज लो नंग थन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हेज थन हिंजे थे बोंटे फेके राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस लुजुंग 21 मई दो मनाई लिख चेन छो थे दिन रो इरी युल गी द्वांग दुरे नीचू प्रधानमंत्री राजीव गांधी गी शीदोस रोहित लिखचा बोंठे रे मनाई लिख चेन छो 1991 रो लो रो तमिलनाडु गी श्री पेरम्बदूर रो तिकी आतंकवादी हमला लीजी ताल थजू हमला रो शी चिये लीजी थे खोची

रो इरियुलगी द्वांग दुरे नीचु प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शीदोस रोहित लिखचा बोंठे रे मनाई लिखचियन छो। 1991 रो लोरो तमिलनाडु की श्री पेरम्बदूर रो तिकी आतंकवादी हमला लीजी ताल थजू हमला रो शी चिये लीजी थे खोची भारत सरकार जी थे दिन रो आतंकवादी के खिलाफ जागरूक लिखचा नंग मीज जो थिप न ति की क्या छी नंग मानवता की संदेश दचा बोंठे मनाई लिखचूंगी फैसला थीं चीज। आतंकवाद बम नंग बंदूक रोकेस दि सीमित मेश थेती की सोच हेश सुई मीज जिनाना गियर थिपचुम नंग नफरत फैलाई लिखचीश। आतंकवाद की छाई बसल तेजी मकसद समाज की मीज बला कुं गियर फैलाई लिखचा नंग थे मी जो पुर्चा नंग नुस्के लिखचा के जिमेज बल्कि मी छाई गी विश्वास नंग एपो मिजिस नंग शांति रो खोमचा बोंठेश। थन जम्बुलिंग रो लगभग यूल छाई रो आतंकवाद की चुनौती रो सामना लिखचेन छो। खचीबार धर्म की मिंदो खचीबार राजनीति की मिंदो नंग अलग बात गी मिंदो रे आतंकवाद रो बढ़ावा दचीश। पर असल फैस खाज लो नंग आतंकवाद गी खर धर्म मयेश खर जाति मयेश खर खर इंसानियत मयेश। इरी भारत योल दो बंती बंती मी तेयेश हो बंती बंती धर्म गी संस्कृति गी नंग थिर कंजी इरी योल दो शांति नंग तिकी क्या चीज योदे खुशित मई गुनशीश। इरी योल बंती बंती फैस संस्कृति नंग धर्म गी संगमेश थिनारो युल दो समाज दो नफरत फैलाए ली नंग असर युल की मी छाए दो क्यमेश। थे आतंकवाद के खिलाफ लेन लिखचा सेना या पुलिस पर जिके जी जिम्मेवारी मेश बल्कि हिंसाएं की जिम्मेवारी हेश। इरी युल की सुरक्षा बल सेना पुलिस नंग खुफिया एजेंसी जी नरो चिफितोस तो इरी सुरक्षा बोंटे लेन लिखचियन छो। होश में ही जवान फौजी पर जी एरी यूल की रक्षा बोंठे राइन जान रे बलिदान लिखचीन छो। थन थे अफसर दो यूल की बोंठे शीची एली जवान नांग फौजी जी छाई छाई दो श्रद्धांजलि दचुम छो। थन सुंग शे आतंकवाद की नुई नुई रूप कंचा रुखुक्षुश ऑनलाइन कट्टरता नंग किसका सूचना जी सोशल मीडिया की माध्यम रुकची कई बार मी जी बला कुं किसका समाचार दचा समाज रोहितिक शिबुन थे खर मई दो नफरत फैलाई लिखचा नंग युवा जोरो भड़काई लिखचा रो कोशिश लिखचिन छो। थे छाई रोक ची बचाई लिखचा बोंठे हिंसाई जो युल की शरबा नचुंग मा छाई दो बेते जो शांति शांगजी जो जागरूक नंग समझदार के अरे होश में गुन शीश। खती अफवाह यार तो यू न भरोसा लिखचुमेश छाई बसल दुरे थजू अफवाह की जांच पड़ताल लीजी व दल्ले विश्वास लिखचुश। आतंकवादी की हिंसक नंग मी जो मारे लिखचुम की सोच दिएश सुई मकसद मी जी सेमरो गियर नंग असुरक्षा पैदा लिखचिन छो। जब समाज रो युल की मी जी बला कुं गियर की माहौल क्या थी नंग निर्दोष मी जो रो थे असर के येश। खर मई दो निर्दोष मी जी पुरती चुम जगह जगह रो हमला लिखती चुम नुआस तो खची मी जी के जी मई यूल गी मी छाई दो नुस्केल नंग बार दो थांगशा दचीश। समाज की मी छाई गी सेम नंग दत्पा रो गियर चक्षा दचीश। आतंकवाद की छाई बसल छेर गी फैस खा हेज लो नंग थे आतंकवाद की हमला रो बेगुना मी जी नोई बार दो के ही रहीश सुसुता शीची एलीश क्युक्ची क्युक्ची बेते जी अमा ओ मई के ईश खुश में टबर की खुशहाल जिंदगी खोम जी एलीश। आतंकवाद की सुरक्षा की बुनठे के जी मेश बल्कि मी छाई की मानवता की खिलाफ रे अपराध तिहेश। इरी भारत योल जी समय समय रो आतंकवाद की बार तो होश में कंचास्तो कचांगस्तो थांग जी नंग महसूस लिखशीश। इरी भारत योल जी तेजी बसल तेजी आतंकवादी हमला थांगशीश गुई बेकसूर मी नंग सुरक्षा कर्मी जी शहीद के इंचो चाहे थजू संसद रो हमला लिखचा हेज मुंबई की हमला या युल की ससा ससा जगह रो बम विस्फोट लिखचाएश थे छाए जी युल की मी छाए दो होश में गिर दे दचीश। लेकिन थे रोकची भारत युल मजबूती हम पो आतंकवादी खिलाफ शेन

शी सामना लिख चीन छो। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हिंग जो आतंकवाद के खिलाफ विरोध लिखचर रेके जिमेश बल्कि युल दो समाज रो थिप ननंग तिक्की के छि जुमेंगी बोंठे रहेश। हिंसाई इरी जीवन रो क्युक्ची क्युक्ची फ्यास रो ध्यान देनंग इरी समाज रो मजबूत लिखचर रो यतो केमेश। जैसे जाति नंग धर्म की आधार रो भेदभाव लिखचुमेश। हिति मीज यो गि भावना रो सम्मान दचुश। किसका किसका समाचार रोकची सावधान किया चुमछो। सोशल मीडिया की इस्तेमाल एपो लेन नंग जिम्मेदारी अम्पो लिखचुश। बेते जो नंग एरी युल की भविष्य न चुंगमा शर्बा जोरो शिक्षा दचा एपो लब्जा दचुमछो। नंग दरुंग युल की मीच हाई की बलाकुंग यशा लिखचा नंग तिकी क्या छि जुमेन की सोच रो बढ़ावा दचा ग्युनशीश। युवा युल की छाई फसल तेजी ताकतेश। ताल जो लोकचा तो नचु अमची रो एल दे नंग जागरूक केमेन गी लब्जा खुक्ष ग्युनशीश। शिक्षित नंग जागरूक के इचु समाज रो गुमरा लिखचा लोई मेश। थे बोंटे इरांग जो बेटेज जो पेचई ज्ञान नंग यंपो हिती नैतिक मूल्य ज्ञान दचा रे ग्युनशीश। ताल जो इंसानियत छाई बसल तेजी धर्म हेश थे लेचा ग्युनशीश। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की अवसर दो शी ची एली चुम जो शहीद के ही चुचो श्रद्धांजलि द चुम छो। नंग एरी युल की फौजी सेना पर जो नोई शक्ति दच बुंठे मोलम त चुम छो। एरी भारत युल वासुदेव कुटुम्बकम रो विश्वास लिख चेन छो। थजु खजलो नंग जम्बुलिंग की मी छाई टबर चोक से तिक की कह छी जो देरो लोचुश। द थे फैस ख्या खोम गए थे द ललती हिनकते स्वांगलो धरती ललथिर चिपा मंदासी नंग यतो जी।

The telala kochi her gunshi pesti kuchi rejinya. The te program do her ese vishe ki bonte peke sui paryavaran ke zui mudda timesh. Balki eri zuks ki bonte eri ramin supiri chai nang yul chai ki bhavishya rokchi jurai ke yesh. Thazu pyas khahesh lo nang plastic mukt bharat. Lo nang eri yul ro shugui kutul gi istemal khatam likcha bonte. Than gi time ro te plastic ji eri jivan gi hissa ti ke yish. Ngaro shenshi, toothbrush gi shugu shil, rokchi, soti gi botol, pelsi gi packet, phone gi cover, zamin gi packing nang hati ro khukshi chu kutul asto. Chai jaga rohing jo shugu kutul gi istemal likchi incho. Thekhi riramej, kurcha nang kolcha ro loi riramej. पथन इरी बोंठे थे प्लास्टिक छाई बसल तेजी छेर गी फेस्ती हेश दूरे तमी जी रस गी कुतुल कुर्ची बाजार दोए लिंचो सई शिंग जंगस्मा नंग स्टील गी चलाक्षी कोल चिंचो थे चलाक्षी रे एपो नंग पर्यावरण रो नोमिन मई तेज ददाल तो दाल तो प्लास्टिक जी इरी आदत जो लेखशीश इरी लोई सुविधा जो रो नोई ध्यान दचीश प्रकृति रो ध्यान दच बुझ जी थी चीश छाई बसल तेजी समस्या सिंगल यूज प्लास्टिक की हैश थजुखा हैश लो नंग शुगु कुतुल रो ती की बार इस्तेमाल लीजी छांग चा थी चा जैसे हटिंग खुक्षी चू प्लास्टिक की कुतुल जी ख्योची कालजोर ख्योची स्ट्रॉ सोती की बोतल नंग पैकिंग लिखी जमीन गी कुतुल थे कुतुल जी चू न बक्ता बोंठे कोलची छंग चुमछो व थे कुतुल जी सेकेंड सैकड़ो लोजुंग एरी जम्बुलिंग रो नुआ छंग जी एरी पर्यावरण रो नोमेश थे प्लास्टिक जी नाली छाएर जोक एल जी सोती एलमेन गी अमची जो रो बन लिखते चुश थे प्लास्टिक तेई चू सोती तेजी तेजी जिंग रो लेपशी सोती नाना नी चू जीव जो रो नोमिश प्लास्टिक जी थिरमंग थिरमंग छांग जी क्यू हम्बू हिती जीव जमीन चोलचा वक्त प्लास्टिक रेजर थी चुप थजोक ची खची बार ताल जी शी चील इन छो थन हिमालय क्षेत्र नांग टूरिस्ट की जगह जगह रो प्लास्टिक हिमसा की तेजी समस्या नीश दे दे लै रुआंग ग्रोकपो जी दाल तो दाल तो प्लास्टिक रोकची प्रभावित के यश वैज्ञानिक पजील लोची इंशो

दथंगी समाचार हिंकते प्रदेश रो 26, 28, 29 मई रो ग्यमिंसु पंचायती राज संस्था की चुनाव की बोंठे निर्वाचन आयोग जी तैयारी लिखचिया चुकशीश। राज्य रो 131 पंचायत निर्विरोध चुनाई लिखशीश। थजोक ची छाई बसल नोई 42 पंचायत शिमला जिला की हैश। प्रदेश रो 176 पंचायत चुनाव एपोलीजी केईश। नांगथे रोकची छाई बसल नोई 51 पंचायत प्रधान शिमला रोतेश। चुनाव की नाना लेन लिखची पजो लेन लिखचुम की अभ्यास रिदचीश। चुनाव आयोग की फेस के मुताबिक थे बार बैलेट बॉक्स रो क्यूआर कोड रो स्कैन लीजी खोजी पोलिंग पार्टी जी इंजी इंजी जगह रो हिलचुम लोचा। नहान रो रे थन मतदान अधिकारी जोरो प्रशिक्षण दचियेश। खंड विकास अधिकारी अंजलि गर्ग जी 23 मई दो सुमी चरण की प्रशिक्षण की कार्यक्रम के मेश लोता। हिमाचल प्रदेश रो जनगणना 2027 की छाई फसल दुरे चरण 16 जून रोकची शुरू के मेश थे 15 जुलाई अस्तो छाई के मेश। जनगणना की एपोलीजी सफल कैरे की बोंठे थन जनगणना कार्य निदेशालय शिमला रोते की बैठक लिखशीश। थे बैठक रो आकाशवाणी दूरदर्शन सीबीसी नंगपत्र सूचना ब्यूरो रो लेन लिखची पजी ग्वांगची ग्वालोता। थे दौरान जनगणना की बोंठे मी जोखाना जागरूक लिखचुश थजू बोंठे फेई हेश। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा जी लोशीएश की जनगणना 2027 रो छाई बसल दुरे यूल की टबर जो सवगणना की विकल्प दचियेश। नांग जून लैगी गोमाक ची 15 अस्तो ऑनलाइन फोन रोक ची वेब पोर्टल रो राय

जानकारी द चटुपचीश ताजी प्रदेश रो छाई मीजो जनगणना यंपो जुड़ाई के अरे रो अपील लिखता द थेना यंपो थंगी समाचार ख्याकुम द थंगी आखिर लला हिंकते।

0: कृषि, बागवानी और पशुधन से संबंधित अपने किसान भाइयों से साझा करते हैं।
1: जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए समय समय पर उनके जो कार्य होते हैं, जो उन्होंने इन दिनों कार्य करने हैं, उनकी जानकारी भी देते रहते हैं। तो हमारे किसान भाई आजकल व्यस्त थे अपनी जो रबी की फसलें हैं उनकी कटाई करके उनका भंडारण करने में। तो देखिए धूपें बहुत अच्छी लगी हैं, अपनी फसलों को आप अच्छी तरह से सुखाएं, उसके बाद ही उनका भंडारण करें। तो राजेंद्र, आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास लेकर आए हैं अपने किसान बागवानों के लिए, बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे माइक्रोराइजल जैव उर्वरकों के बारे में, और साथ ही जानकारीपूर्ण बातचीत सुनवाएंगे विदेशी सब्जियों का आजीविका अर्जन करने में महत्व, और हमेशा की तरह लोकगीतों से होगा आपका मनोरंजन भी।
0: जी, तो निशा, बात करते हैं काम की बातों में। माइक्रोराइजल जैव उर्वरक क्या है और उसका महत्व क्या है? माइक्रोराइजल जैव उर्वरक कवक और पादप जड़ के मध्य एक सहजीवी संबंध होता है। लगभग 95% पौधों की प्रजातियों में ये संबंध पाया जाता है। माइक्रोराइजा मिट्टी जैविक और मिट्टी रसायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइक्रोराइजा पौधों के लिए मिट्टी से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। ये फसलों की पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइक्रोराइजा पौधों के द्वारा जल के अंतर्ग्रहण की क्रिया दर को बढ़ाकर उन्हें सूखे की परिस्थिति में प्रतिरोधक भी बनाता है।
1: जी बिल्कुल, और इसी कारण इन्हें प्राकृतिक जैव उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों से पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इनको मुख्यतः एक्टोमाइकोराइजल और एंडोमाइकोराइजल जैव उर्वरक में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैव उर्वरक का उपयोग जैविक खेती हेतु किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जैव उर्वरक है क्या।
0: जी निशा, जैव उर्वरक जीवित उर्वरक है जो सूक्ष्म जीवों के मिश्रण से तैयार किए जाते हैं। जैव उर्वरक मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करती है, मिट्टी में पोषक तत्वों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत बैक्टीरिया, फफूंदी और साइनोबैक्टीरिया है। किसान अक्सर सोचते हैं कि सूक्ष्म जीव उनकी फसल के लिए नुकसानदायक है, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकांश सूक्ष्म जीव फायदेमंद होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादन में सुधार भी करते हैं। जैव उर्वरक मिट्टी में मौजूद महत्वपूर्ण जटिल पोषक तत्वों को पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किए जाने वाले तत्वों में परिवर्तित करने में भी सहयोग करते हैं।
1: जी बिल्कुल, बात करें जैव उर्वरकों का वर्गीकरण किस तरह से कर सकते हैं। देखिए पोषक तत्वों की घुलनशीलता या फिर उनके स्थिरीकरण के आधार पर जैव उर्वरकों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण जैव उर्वरक, नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरकों में राइजोबियम, एक्टिनोबैक्टीरिया, एजिटोवेक्टर और एजोस्पाइरम इत्यादि मुख्य सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय आण्विक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसे कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं।
0: जी हाँ, बात करें फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरकों की, तो फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरकों में बैक्टीरिया होते हैं जो अघुलनशील यौगिकों से अकार्बनिक फास्फोरस को घोलने में सक्षम होते हैं और इसे पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को आमतौर पर फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं फास्फोरस संगठित करने वाले जैव उर्वरकों की, तो इस प्रकार के जैव उर्वरकों में माइक्रोराइजल कवक होते हैं जो मिट्टी में विद्यमान असंगठित फास्फेट को सहजीवी संबंध द्वारा पौधों को उपलब्ध करवाते हैं।
1: जी हाँ राजेंद्र, बात कर लेते हैं कि जैव उर्वरक क्यों जरूरी हैं, क्यों उपयोगी हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी और जल का प्रदूषण होता है, जिससे कि मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और लाभकारी कीड़े नष्ट हो जाते हैं, और मिट्टी की उर्वरता कम होने से फसल की पैदावार प्रभावित होती है। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की भांति पर्यावरण और जीवों को क्षति नहीं पहुंचाते और मिट्टी की उर्वरता सुधार में योगदान भी देते हैं। इसे खेती के लिए एक पर्यावरण हितैषी समाधान माना जाता है। जैव उर्वरकों को जब बीज और मिट्टी में मिलाया जाता है तो इससे पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। जैव उर्वरक मिट्टी की संरचना में सुधार भी करता है और बीज के अंकुरण को बढ़ाता है। जैव उर्वरक पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता में वृद्धि

0: वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कम लागत के होते हैं।
1: जी हाँ निशा जी, अब बात करते हैं AM जैव उर्वरक बनाने की विधि के बारे में। सामग्री की उपलब्धता और उत्पादित होने वाले AM जैव उर्वरक की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की विधियाँ अपनाई जा सकती है। गमलों में AM जैव उर्वरक उत्पादन किया जा सकता है। माइक्रोराइजल जैव उर्वरक का सबस्ट्रेट तैयार करने के लिए एक गमले में 20 संक्रमित मिट्टी और रेत को 1:1 में मिलाएं। गमले के 3/4 भाग को सबस्ट्रेट से भरें और उसमें एक मुट्ठी AM इनोकुलम डालकर मिलाना चाहिए। गमले के बचे हुए हिस्से को सबस्ट्रेट से भरें और उसमें मेजबान और नर्स पौधों जैसे मक्का, जौ, गेहूं और रागी के बीज आप बो सकते हैं। पौधों की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। फूल आने पर धीरे धीरे सिंचाई कम करें। पहले 1 दिन के बाद सिंचाई करें, फिर सप्ताह में 3 बार, फिर सप्ताह में 2 बार और फिर सप्ताह में 1 बार और अंत में पानी देना बंद कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, पौधों को पूरी तरह से सूखने दें और फिर मेजबान और नर्स पौधों को काट लें। इस समय तक गमले की मिट्टी में भरपूर मात्रा में माइक्रोराइजल प्रोपेगुलस तैयार हो गए होंगे। गमले से मिट्टी और जड़ों को निकालें, जड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और गमले की मिट्टी में मिलाकर थोड़ा सा हवा में सुखाएं। ये मिट्टी और कटी हुई जड़ों का मिश्रण ही AM जैव उर्वरक है। इसे पौधों की जड़ों के समीप या फिर खेत की मिट्टी में आप डाल सकते हैं।
1: जी हाँ निशा जी, बात करते हैं माइक्रोराइजल जैव उर्वरकों के महत्व के बारे में। माइक्रोराइजा के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक शक्ति में सुधार, पौधों की जड़ों का विकास होता है, जड़ें अधिक पोषक तत्व अवशोषण में सक्षम हो जाती हैं जिससे फसलों की उपज में वृद्धि होती है। माइक्रोराइजा फास्फोरस के अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाता है। मिट्टी से फास्फोरस की उपलब्धता को 60-80% तक बढ़ाता है। फास्फोरस की मुख्य भूमिका पौधों द्वारा नई जड़ें बनाने, बीज, फल और फूल के निर्माण में होती है। माइक्रोराइजा नाइट्रोजन के अवशोषण की क्रिया में भी वृद्धि करता है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि उत्पादकता के महत्वपूर्ण निर्धारक है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से क्लोरोफिल एक अनिवार्य हिस्सा है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है।
0: माइक्रोराइजा मृदा जनित जड़ सड़न रोग जनकों से पौधों की रक्षा करते हैं और माइक्रोराइजा के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है और मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। माइक्रोराइजा पौधों के द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाता है जिससे कि पौधों के सूखे और लवणता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। शुष्क क्षेत्रों में माइक्रोराइजा की महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि ये मिट्टी की दरारों से और मिट्टी से पानी अवशोषित करते हैं जो कि जड़ों के रेशे नहीं कर सकते। जैव उर्वरक मिट्टी में जैव विविधता और मिट्टी की उत्पादकता में सुधार करते हैं। पौधों के दौरान प्रत्यारोपण झटके को कम करते हैं और पौधों की वृद्धि और जीवंतता को बढ़ाते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल उत्पादकता को भी बनाए रखते हैं।
1: जी जी, तो निशा जी, ये तो बात हुई माइक्रोराइजल जैव उर्वरक और उसके महत्व के बारे में। तो अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं रोशनी की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अब हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका विषय रहेगा विदेशी सब्जियों का आजीविका अर्जन करने में महत्व, जिसमें डॉक्टर रमेश भारद्वाज से जानकारी हासिल कर रहे हैं जय सिंह। तो आइए सुनते हैं।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को नमस्कार। किसान साथियों, समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नई नई कृषि और बागवानी संबंधी जानकारी लेकर के आते हैं, और आज फिर से रूबरू हैं हम आपके समक्ष एक और नई जानकारी के साथ। आज का विषय बहुत ही किसान और बागवान भाई बहनों के लिए बहुत ही उत्तम है और लाभदायक भी होगा। किसान साथियों, आज के विषय की यदि हम बात करें विदेशी सब्जियों और आजीविका में उनका महत्व, इस विषय पर हम बात करेंगे। किसान भाई कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं? किसान भाइयों, कार्यक्रम में अधिक जानकारी के लिए हमारे समक्ष उपस्थित है डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी, जो आपको जानकारी देंगे विदेशी सब्जियों और आजीविका में उनका महत्व के विषय में। डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद जय जी।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान और बागवान भाई बहने आपसे यह जानना चाहेंगे कि मुख्य विदेशी सब्जियां जो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने की जो संभावना है, वह सब्जियां कौन कौन सी हैं?
2: जय जी, जैसे आपको मालूम है कि विदेशी सब्जियां अपने आप में ही एक ऐसा नाम है जो कि हमारे प्रदेश में आज से 30-40 साल पहले मुख्य रूप से नहीं उगाई जा सकती थी, लेकिन 80 और 90 के दशक में जब ये सब्जियां हमारे यहाँ उगाना शुरू हुई तो लोग इनके बारे में इतने जागरूक नहीं थे, क्योंकि ये ऐसी सब्जियां हैं क्योंकि ये बाहर से ही खासकर यूरोपीय देशों से यहाँ मंगवाई गई और यहाँ पे इनको लगाना शुरू किया, लेकिन हमारे किसान इनके बारे में इतने जागरूक नहीं थे। लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो इन सारी सब्जियों को उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पाया गया है, और जो कि ठंडे तापमान में

0: होती है उस प्रकार का जलवायु हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है।
1: अब आपसे यह किसान और बागवान भाई बहनें जानना चाहेंगे कि जो क्षेत्र है हिमाचल में, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह जो विदेशी सब्जियां हैं वो उगाई जा सकती हैं।
0: जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ जो विदेशी सब्जियां हैं वो यूरोपीय देशों से बाहर से जो यहाँ पे लाई गई थी और यहाँ पे उगाना शुरू की, तो वहाँ के देशों का जो तापमान था वो ठंडा रहता था और ठंड उस टाइप का जो क्लाइमेट है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में उपलब्ध रहता है। लेकिन खासकर हमारे हिमाचल प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र है, खासकर हमारा लाहौल एंड स्पीति जिला,
1: जी
0: किन्नौर जिला, चंबा जिला का कुछ भाग और उसके अलावा जिला शिमला और हमारे शिमला सोलन के कुछ क्षेत्र जहाँ पे ये सब्जियाँ मुख्य रूप से उगाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ का जलवायु ऐसा है कि वो इनकी फसलों को उगाने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त पाया गया है।
1: जी बहुत ही उत्तम डॉक्टर साहब। अब आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली सब्जियों के लिए जलवायु व स्थान और तापमान का जो महत्व है वो क्या है?
0: जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये ऐसी सब्जियां हैं कि जो ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती हैं,
1: जी
0: और ये सब्जियां ऐसी है कि उनके उगाने के लिए शुरू से लेके अंत तक कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है और वो हमारे उन क्षेत्रों में उपलब्ध है जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि कुछ एक हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे होती है। और इनमें खासकर हमारे जो यहाँ लगने वाली और उगाने वाली जो सब्जियाँ हैं, मैं आप बता दूँ आपको कि मुख्यतः ब्रोकली है,
1: जी
0: एस्पेरेगस है, ब्रुसल्स स्प्राउट है और हमारी सैलरी है, पार्सले है और इसके अलावा लाल और पीली शिमला मिर्च है, इसके बाद लाल बंद गोभी है जो उनके लिए उपयुक्त पाया जाता है। तो उस क्षेत्र में जो तापमान रहता है वो इनके लिए बहुत ही उपयुक्त है जो मैंने आपको जगह बताई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सब्जियां उस समय में हमारे यहाँ उगाई जाती है जब यहाँ पे वो तापमान उपलब्ध होता है उन जिलों में जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे, जब ये अन्य जिलों में हमारे अन्य पड़ोसी राज्यों में उपलब्ध नहीं होता है, तो उस समय जब भी ये सब्जियाँ उगाई जाती तो वहाँ पे ये बेमौसमी सब्जी के रूप में उगाई जाती है जिस करके कि इनकी ज़्यादा मांग रहती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी कि कौन कौन से स्थानों पे जो है उगाई जा सकती है, सब्जियों के नाम आपने बताए। अब हमारे किसान और बागवान भाई बहनें आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विदेशी सब्जियों का हिमाचल प्रदेश में क्यों एक विशेष स्थान है और क्यों जो है इन सब्जियों की ज़्यादा मांग बढ़ रही है, और हमारे किसान और बागवान भाई बहनें इन्हें उगाकर किस प्रकार से जो अपनी आय है उसको भी बढ़ा सकते हैं।
0: जय जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये विदेशी सब्जियों के नाम से हैं तो यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा इस प्रकार का जलवायु रहता है कि जहाँ ठंड रहती है और उन क्षेत्रों में हमारे खासकर विदेशी पर्यटक और हमारे यहाँ भारतवर्ष से भी आने वाले जितने भी पर्यटक जो लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, और खासकर उस समय जब यहाँ पे वो मौसम यहाँ पर तो अच्छा होता है लेकिन अन्य जगहों पे वहाँ गर्मी होती है, तो उस समय ये फसल वहाँ पे उगाई जाती हैं जितनी भी ये विदेशी सब्जियाँ मैंने आपको बताई। पर्यटकों का आना जाना बहुत लगा रहता है और खासकर विदेशी पर्यटकों का, तो वो लोग इन सब्जियों को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही गुणकारी होती है और अन्य सब्जियों की अपेक्षा ये सब्जियाँ अधिक मूल्य पर बिकती हैं। और हमारे यहाँ आपने देखा होना कि हिमाचल प्रदेश में खासकर जो एक होम स्टे का कंसेप्ट चला हुआ है आजकल कि लोग जिन घरों में रहते हैं वहीं पे ही उनके द्वारा बनाए गए व्यंजन और तैयार की गई सब्जियां, तो उस संदर्भ में खासकर लोग वहां पे अपने आप ही अपनी क्यारियों में उनको उगाते हैं, अपने घरों के आसपास तैयार करते हैं और उन्हीं को बना के उनको खिलाते हैं, तो इसके करके इनकी एक विशेष महत्व रहती है। और खासकर मैं आपको बता दूं कि ये अधिक दामों पे इसलिए बिकती हैं क्योंकि एकदम आप फ्रेश तैयार करते हैं, अच्छी गुणकारी होती है और अन्य सब्जियों की अपेक्षा ये जल्दी तैयार हो जाती है।
1: जी बहुत ही बढ़िया आपने उत्तम जानकारी दी कि पर्यटक भी जो है इसे आकर्षित होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है डॉक्टर साहब, बहुत विविधताएं इस प्रदेश में है।
0: बिल्कुल
1: बहुत ही ठंडे प्रदेश भी है जहाँ एक और ऊना है, बहुत गर्म होता है।
0: बिल्कुल
1: वहीं लाहौल स्पीति की बात करें, जनजातीय जिला है, बहुत ठंडा होता है, लेकिन ठंडी में भी, बर्फ़ के होने के बावजूद भी, वहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो बहुत ही उत्तम और गुणकारी होती है और पर्यटक उससे ज़रूर आकर्षित होते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान और बागवान भाई बहनें आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अधिक दाम जो इन सब्जियों के हैं बाज़ार में वो कैसे मिलते हैं और इनकी मांग जो है वो बाज़ार में किस प्रकार की रहती है?
0: जैसे कि जय जी मैंने आपको बताया के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि हम

0: हमारे यहाँ ये उस समय तैयार होती है, खासकर उन जिलों में जब ये पूरे भारतवर्ष में और अन्य पड़ोसी जिसको राज्यों में नहीं तैयार होती है, वहाँ उस टाइम बहुत गर्मी होती है। तो
1: जी
0: हमारे यहाँ ये उन्हीं कुछ एक महीनों में, मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर के महीनों में ही बीच में ये तैयार की जाती हैं। तो इसमें हमारे को, मैं बता दूँ आपको कि खासकर कुछ एक ऐसे जिले हैं जहाँ पे कि कोई एक विशेष सब्जी विशेष रूप से उगाई जाती है, जैसे कि हमारा किन्नौर जिला है, उसका जो सांगला क्षेत्र है वहाँ पे एस्पेरेगस की खेती बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है। इसी तरह हमारा लाहौल स्पीति का जिला, जहाँ पे कि ब्रोकली और लेट्यूस जिसे हम सलाद बोलते हैं वहाँ पे लगाया जाता है। उसी प्रकार के हमारे सोलन जिला में भी, शिमला में भी और हमारे कांगड़ा में भी कुछ कुछ एक ऐसी सब्जियां हैं जहाँ पे ये तैयार की जाती है। तो ये जहाँ पे जब तैयार होती है तो ये एक किस्म से एक जो बेस मौसमी सब्जी के रूप में तैयार होती है, तो इनका किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं। और इनके उगाने के लिए, जैसे आप पूछ रहे थे कि एक खास कोई विशेष शस्य क्रिया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितनी भी सब्जियाँ हैं जो विदेशी सब्जियों के उसमें आती हैं, ये
1: जी
0: सारी सब्जियाँ इनका बीज छोटा छोटा होता है और उनको जो हम जो पनीरी द्वारा तैयार किया जाता है। तो जब आपकी पनीरी अच्छी और स्वस्थ होगी तो इसके लिए आपको एक विशेष स्थान का चयन करना है, उसके बाद ही अगर अच्छा पौधा होगा तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। और इसके लिए आपको अच्छे बीज का ही चयन करना चाहिए और बीज भी अच्छी ही जगह से लेना चाहिए, जिससे कि आपका फसल और फसल का उत्पाद अच्छा हो।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी बीज के बारे में, क्षेत्रों के बारे में। अब थोड़ा सा मौसम पे भी आ जाते हैं, कौन सा मौसम जो है उपयुक्त रहता है कि जिस मौसम में यह सब्जी उगाई जानी चाहिए और इसकी फसल भी जो है किसानों को बेहतर मिले और उसके जो बाजार में दाम भी अच्छे मिले।
0: बहुत अच्छा जय जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज़ है जिसको लगाने के लिए, और कोई भी फसल है, चाहे सब्जी है चाहे कोई अन्य फसल है, उसके लिए मौसम का बहुत ही महत्व रहता है। तो इस संदर्भ में आप बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी सारी विदेशी सब्जियाँ हैं ये खासकर ठंडे मौसम में ही तैयार होती है,
1: जी
0: और हम उसको उन्हीं महीनों में तैयार करके लगाते हैं जब वहाँ ठंड होती है, क्योंकि ज़्यादा तापमान में इनकी अच्छी बढ़वार नहीं होती, ना इनके अच्छे जो गुणकारी तत्व होते हैं ना ही वो उतने उपलब्ध रहते हैं। तो खासकर ये जो है ठंडे ही मौसम में तैयार होती है।
1: यानी हम कह सकते हैं कि नवंबर से लेकर के और जो आपका मार्च का तक
0: हाँ,
1: का जो समय है।
0: उसके लिए यहाँ हमारे निचले क्षेत्रों में ये लगाई जाती है, और खासकर जो मैंने जनजातीय क्षेत्र बताए तो उन क्षेत्रों में ये सिर्फ मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक लगाई जा सकती है।
1: यानी कि जनजातीय क्षेत्रों की बात करें, अधिक ठंड भी रहती है,
0: हाँ
1: बर्फबारी भी बहुत रहती है,
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में जनजातीय क्षेत्रों में तो 12 महीने भी सब्जियों का क्या उत्पादन हो सकता है?
0: कुछ एक सब्जियां हैं जिनको हम बोलते हैं एक संरक्षित खेती, जैसे पॉली हाउस में लगा के हम उनको तैयार किया जा सकता है। अदरवाइज ये फसलें वहाँ पे मार्च अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक के महीनों के बीच में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। और निचले क्षेत्रों में हमारे जब यहाँ ठंड होती है अक्टूबर नवंबर से लेके और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इवन मार्च तक इनको उगाया जा सकता है। और इनको जो मैंने कुछ एक फसलें आपको बताई है कि जैसे हमारी चेरी टमाटो है और हमारी शिमला मिर्च है, तो इनको संरक्षित खेती के रूप में भी, जैसे बोलते हैं ना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउस में भी इनको उगाया जा सकता है। और खासकर इनकी खेती और इनकी बढ़भार और इनके जो गुण हैं वो खासकर पॉली हाउस में ही अच्छे आते हैं, क्योंकि उनको वहाँ एक किस्म का विशेष तापमान उपलब्ध रहता है।
1: डॉक्टर रमेश जी, हमारे किसान और बागवान भाई बहनें आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि स्वस्थ और अच्छे गुणकारी जो बीज है वह उनकी जो पौध है वह कहाँ उपलब्ध होगी, हमारे किसान और बागवान भाई बहनें कहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि जो हमारी कोई भी फसल लगानी है तो उसके लिए एक अच्छा और स्वस्थ बीज का होना बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बीज अच्छा होगा तो आपकी फसल और फसल का उत्पाद जो है बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए ये बीज हमारे यहाँ, पहले इनकी बहुत कठिनाई होती थी अच्छा बीज प्राप्त करने के लिए, कुछ ही एक जगहों पे उपलब्ध रहता था या हमारे को विदेशों से मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे जितने भी हिमाचल प्रदेश में जैसे हमारे बीज आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक किस्म का एक जो सर्टिफाइड प्रमाणित बीज है, वो वहीं से आपने बीज जो लेना चाहिए और इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और कुछ एक फसलें ऐसी हैं जिनका कि आप डायरेक्ट किसान, हमारे कुछ एक ऐसे समूह बने हैं जो कि खुद पनीरी तैयार करते हैं, तो वहाँ पे बीज लेने के बजाय आप उनसे अच्छी बीज जो स्वस्थ पौधा है वो ली जा सकती है।
1: जी डॉक्टर रमेश जी, अब आपसे किसान और बागवान भाई बहने जानना चाहेंगे कि आजीविका में कोई और विशेष साधन जो है वह क्या है, बीज कैसे तैयार किए जाते हैं और सब स्वस्थ पौध जो है वो किस प्रकार तैयार की जाती है और कैसे जो इनकी खेती है वो की जाती है?
0: जय जी, जैसे हमारा ये विषय था कि विदेशी सब्जियों और आजीविका में उनका साधन, एक तो मैंने

0: आपको बता दिया कि दूसरी सब्जियों की अपेक्षा ये वो सब्जियां हैं जो कि अधिक गुणकारी हैं और इनकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है पूरे वर्ष भर में अलग अलग समय पर, और हमारे हिमाचल प्रदेश में ये अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर उगाई जा सकती है और उगाई जा रही है।
1: जी
0: तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक किसान समूह हैं जो कि अपना बीज इनका तैयार करके भी अपनी आजीविका चला सकते हैं, और दूसरा रहेगा कि जैसे मैंने बताया कि अन्य सब्जियों की तरह इन सब्जियों की भी, जैसे हमारे कुछ एक किसान हैं जिला सोलन में है शिमला में है, वो पूरा वर्ष भर सब्जियों की पौध ही तैयार करते हैं और बेचते हैं, तो इन सब्जियों की भी पौध तैयार करके आप अजीब

0: अपनी आजीविका चला सकते हैं। और दूसरा रहेगा कि जैसे मैंने बताया कि अन्य सब्जियों की तरह इन सब्जियों की भी, जैसे हमारे कुछ किसान हैं जिला सोलन में है, शिमला में है, वो पूरा वर्ष भर सब्जियों की पौध ही तैयार करते हैं और बेचते हैं, तो इन सब्जियों की भी पौध तैयार करके आप आजीविका कमा सकते हैं। उसके द्वारा जैसे मैंने कुछ बताया आपको कि एक ऐसी सब्जियां हैं जिनकी संरक्षित खेती, जिसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो उन सब्जियों को भी आप पॉली हाउस में उगा करके तैयार किया जा सकता है, तो वो भी एक आजीविका का साधन है, जिससे कि आपको पॉली हाउस की स्ट्रक्चर लगाने के लिए, आप उनकी जैविक खादें तैयार करने के लिए या कुछ और अन्य जो इनके उपकरण हैं उपलब्ध करने के लिए, आप उनके ऐसे ऐसे संसाधन जुटा सकते हैं जिससे कि आपको अपनी आजीविका को चला सकते हैं। और ख़ासकर जब हमारे कुछ एक सब्जियां ऐसी है जैसे ब्रोकली है और अन्य सब्जियां हैं जिनकी अधिक उत्पाद हो जाता है और हमने उनको बड़े शहरों में या दूसरे राज्यों में भेजना है, इवन हमने उनको बाहर भी भेजना है, तो
1: जी
0: जिसको बोलते हैं उसके लिए एक विशेष चेन होती है, एक जैसे बोलते हैं कि कोल्ड स्टोरेज सिस्टम होता है, तो उस टाइप का भी आप अपना एक आजीविका का साधन जुटा सकते हैं। रेफ्रिजरेटेड वैन्स का भी आप एक आजीविका में अपना सकते हैं, जिससे कि आप किसानों से उन सब्जियों को लेके और उनका भंडारण करके आप दूर दराज के और अन्य 5 तारा होटलों में या अच्छे शहरों में उनको भेज सकते हैं। तो वो भी एक सारे जो आपने को मैंने बताया कि जैसे बीज तैयार करना, स्वस्थ पैदा करना, सुरक्षित खेती करना या कोल्ड चेन में जाके, तो ऐसे ऐसे कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पे कि आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं।
1: बहुत ही बढ़िया डॉक्टर रमेश जी, आपने जानकारी दी किसान और बागवान भाई बहनों को कि किस प्रकार से हम विदेशी सब्जियां उगा करके जो है उसे एक आजीविका का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बना सकते हैं। तो डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जय जी।
2: अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था विदेशी सब्जियों का आजीविका अर्जन करने में महत्व। डॉक्टर रमेश भारद्वाज से बातचीत कर रहे थे जय सिंह। हम आशा करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे।
3: जी बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए अब फिर से समय हो गया है मनोरंजन का, तो क्यों ना अपने किसान बागवान भाई बहनों को सुनवाएं समूह स्वरों में ये लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये स्मूथ स्वरों में लोकगीत। तो निशा जी, घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी अपने किसान बहनों भाइयों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:45 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार जारी। पहले चरण के मतदान के लिए 24 व 25 मई को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कर्नाटक स्मार्ट सिटी के सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाएंगे। और प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी, ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से पार। अब समाचार विस्तार से। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर निगम महापौर और सहब कर्मियों के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण मांगों पर

0: सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान कर्मचारियों को लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सहमत मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
1: इनकी डिमांड्स थी उसको हमने 10% की वृद्धि को भी माना। EGM 4 जून को होने तय हुई है, उसको हम उसमें फाइनल करेंगे। एक डिमांड ये भी आई जो हमारे कर्मचारी सुपरवाइजर जिनको टर्मिनेशन का लेटर इशू हुआ है वो किया जाए, उसमें मैंने लिखा है और उसको मिश्र साहब को भी भेजा है साथ साथ कि आप इसको जो भी इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिवोक भी किया जाए। हमारा एक पारिवारिक एक मसला जिस तरह से होता है उसको बैठ के हमारी सारी चीजें सॉल्व हुई।
0: दूसरी ओर सहब सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत ने कहा कि उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद अब कल से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे।
2: हमारी जो मेयर साहब के साथ सहमति बनी हुई है कि जो 10% है वो मेयर साहब की तरफ से क्लियर है कि हम देंगे, पर इसे जो है AGM में ले जाना पड़ेगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी है जो रोड स्वीपिंग स्टाफ है उनको 4/9/14 नहीं लगता था, उसके लिए भी इन्होंने हम ईवर दिया कि वो भी हम जो है इसको कर देंगे, और साथ में स्पेशल लीव जो मिलती थी हमारे 15 डेज की वो भी जो है इन्होंने हम ईवर ही है कि इसको भी हम दोबारा चालू कर दे, और जो हमारे 41 लोग टर्मिनेट किए गए हैं उनको भी जो है मेयर साहब ने यहाँ से लिख के भेज दिया है कमिश्नर साहब को, इनकी सेवाएं जो है कल से शुरू की जाए और कल से जितने भी सहायक कर्मचारी है वो अपने अपने कार्य पे जाएंगे।
0: गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से सफाई कर्मियों के हड़ताल के चलते शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार लगातार जारी है। इन चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होंगी। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के करीब 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। चंबा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले की 319 ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियों के अलावा मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।
3: हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हर गांव के अंदर उपस्थित हैं, तो जो पोलिंग पार्टीज हैं जो कि 26 को, 28 को और 30 मई को अपने अपने स्टेशंस पे जाके इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगी, तो जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग है साथ में जो हमारे ARO's हैं जो कि काउंटिंग के प्रोसेस को ओवरसी करेंगे उनकी करंटली जो ट्रेनिंग्स हैं वो SDM लेवल पे इम्पार्ट की जा रही है। फाइनल ट्रेनिंग हमारी 24 तारीख को होती है, उसके बाद जो पार्टीज हैं वो अपना सामान मटेरियल लेके अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए मूव कर जाते हैं। पोलिंग स्टेशंस पे मतदाता आते हैं उनके के लिए भी जो बेसिक वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज हैं, रैंप की उपलब्धता प्लस बिजली पानी एक्सेट्रा, ये सब भी हर जगह पे सुनिश्चित कर लिया गया है।
0: उधर सिरमौर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 1,641 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में आयोजित आतंकवाद विरोधी दिवस

0: कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के युग का सूत्रपात किया और पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण भी प्रदान किया।
1: राजीव गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें युवा सोच को मजबूत, उन्होंने युवाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, 18 साल की उम्र के युवा साथियों को वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि लोकतंत्र में वो चाहते थे युवाओं की भागीदारी दिया। उसके बाद महिलाओं को 73वां और 72वां संविधान संशोधन बिल लेकर महिला रिजर्वेशन की बात की।
0: इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ऑफ स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनाए गए मॉडल का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने शहरी विकास क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्द ही हिमाचल से शहरी विकास विभाग, नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक में शहरी विकास कार्यों का अध्ययन करने जाएगा और इन कार्यों से प्रेरणा लेकर इसके सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड के लिए केंद्र से प्रस्तावनाएं अनुमोदित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी है और मैदानी इलाकों के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऊना आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह हमीरपुर के नेरी में 41, सुंदरनगर में 39.9, मंडी में 38.8, सोलन में 36 और शिमला में 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार कल 22 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में आगामी 2 दिनों के दौरान आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने रेणुका जी बांध प्रबंधन पर विस्थापितों की मांगों को लगातार अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांध प्रबंधन ने एनजीटी के आदेशों को दरकिनार करते हुए सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू किया और एनजीटी की शर्तों को भी पूरा नहीं किया। योगेश ठाकुर ने कहा कि रेणुका जी बांध प्रबंधन विस्थापितों पर जबरन कई शर्तों को थोप रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2: रेणुका बांध में जो हमारे विस्थापित बाय इफेक्टेड जो हो रहे हैं, उनके साथ जो है पिछले 17 सालों से अनदेखी की जा रही है। तो हमारी मांग यही है कि एनजीटी के मापदंडों को जो हमारा बांध प्रबंधक है उसको फॉलो करे, जो भी है कंडीशन है ये इसको हटाया जाए और बिना कंडीशनों के हमारी जो हाउसलेस के लिए जो भी हमें पैसा मिलना है वो बिना कंडीशनों का हमें मिले।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, कल से सभी सफाई कर्मी अपने काम पर लौटेंगे। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार जारी। पहले चरण के मतदान के लिए 24 व 25 मई को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कर्नाटक स्मार्ट सिटी के सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाएंगे। और प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते लू का कहर जारी, ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से पार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव और एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं देश का

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। आठ बज चुके हैं और कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में रीमा ठाकुर का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

पुराने गीत जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचते हैं, वो धुनें जो कभी मुस्कान बन जाती है तो कभी यादों की हल्की सी बारिश कर देती है। तो चलिए सुरीले संगीत से सजी इस शाम की शुरुआत करते हैं शारदा के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है दीवाना, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत रचना शंकर जयकिशन की।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

उस दौर की याद दिला देते हैं जब संगीत में सादगी और भावनाओं की मिठास हुआ करती थी। तो आइए सुनते हैं अमर फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीत रचना नौशाद की।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ। जिंदगी में कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती और पुराने गीत उन्हीं यादों का संगीत बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने और शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

हर धुन एक कहानी कहती है, हर शब्द किसी एहसास को जगा देता है, क्योंकि पुराने गीतों की खासियत ही यही है, सरल शब्द, गहरी भावनाएं और सच्चा

संगीत। तो आइए सुनते हैं बरादरी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। संगीत से सजाया है नौशाद ने और बोल लिखे हैं खुमार बाराबांकी ने।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

एक दौर जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं, उसी दौर के संगीत से सजे इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शीरिन फरहाद फिल्म का गीत, आशा भोसले और हेमंत कुमार की आवाज़ों में, तनवीर नकवी के बोल और एस मोहिंदर की संगीत रचना।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भाई भाई फिल्म का गीत गीता दत्त की आवाज में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर आपको उन सुनहरे बीते पलों में वापस जरूर लेकर गया होगा। तो बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: FM शिमला 103.7 MHz के साथ हैं आप, 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सुरों का ये खूबसूरत कारवा यूं ही चलता रहे, हर दिल संगीत की धुन में यूं ही ढलता रहे। जो गीत कभी भूले नहीं जाते, वो महफिलों में हमेशा यूं ही गूंजते रहे। आइए सुनते हैं न्यूयॉर्क फिल्म का गीत, केके की आवाज़ में, प्रीतम की संगीत रचना और शब्द रचना है संदीप।

प्रेम हर रूप में सुंदर होता है, बस उसमें छल ना हो। इसलिए कहा भी गया है कि तू लाख खूबसूरत सही, वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जिसमें शब्द कम, विश्वास ज्यादा हो और दिखावा कम, प्रेम ज्यादा हो।

फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। कुछ ही देर में आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए

0: भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका

0: इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
3: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States

जी हाँ, कार्यक्रम में आज आपके लिए लेकर आए हैं सन 1965 की फिल्म वक्त। इस फिल्म का निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने और फिल्म में नजर आए थे राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना, शर्मिला टैगोर, बलराज साहनी और अचला सचदेव जैसे महान कलाकार।

ये सिनेमा आपको लेकर चलेगा एक ऐसे समृद्ध परिवार की जिंदगी में जिसके मुखिया हैं लाला केदारनाथ, जो अपनी बीवी लक्ष्मी और तीन लड़के राजू, बबलू और मुन्ना के साथ एक सुखद जीवन जी रहे होते हैं और अचानक आए भूकंप से उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। तीनों बेटों की पर

इस फिल्म का एक मशहूर संवाद आज भी लोगों की जुबान पर है। चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, ये संवाद आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। वक्त सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ये संदेश है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियाँ देता है, कभी इम्तिहान लेता है, लेकिन अंत में वही वक्त इंसान को उसकी मंजिल तक भी पहुँचाता है। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए।

कहते हैं कि उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त भले ही कम रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लेकिन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना गुलजार की और संगीत से सजाया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

देखिए, रिश्ते जो हैं वो आवाज़ देकर नहीं चलते, कदम मिलाकर चलते हैं, धीरे से बिना शोर के। कभी एक रुकता है तो दूसरा वजह नहीं पूछता, बस चाल थोड़ी धीमी कर देता है। निभाना शायद इसी को कहते हैं, साथ रहने की जिद नहीं, साथ चलने की आदत।

दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ। संगीत वो एहसास है जो शब्दों से भी आगे निकल जाता है। जब दिल कुछ कहना चाहे तो गीत बनकर गुनगुनाता है। ताल फिल्म का ये गीत अनुराधा पौंडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

जवाब मिले ना मिले, सवाल उभरना ज़रूरी है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। जिन रास्तों की मंजिल नहीं हुआ करती, एक बार तो उनसे गुजरना ज़रूरी है। बॉर्डर टू फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ों में, जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर की बोल, और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए। दस बज चुके हैं, आइए सुनते हैं गजलें।

गज़ल यानी जज्बातों की वो नर्म बारिश जिसमें इश्क भी है, तन्हाई भी, यादें भी है और ज़िंदगी की सच्चाई भी। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को।

पानी समंदर में हो या आँखों में, पानी समंदर में हो या आँखों में, गहराई और राज दोनों में ही गहरे होते हैं। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में ये गज़ल।

हम समझदार इतने कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं और उनके दीवाने भी इतने कि फिर भी यकीन कर लेते हैं। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को।

खामोशी के पीछे एक शोर पनप रहा है, किसी को आहट ही नहीं, सब ढूंढते हैं मुस्कुराहट का राज, पर किसी को अंदर का हाल पूछने की चाहत ही नहीं। चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज़ों में ये गज़ल

10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपको सुना रहे हैं आया सावन झूम के। इस फिल्म का गीत शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले ना चले दिन पलटते रहते हैं। सिलसिला फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़, जावेद अख्तर की बोल, और संगीत दिया है शिवहरी ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आरती मुखर्जी को फिल्म मासूम में, संगीत रचना आर डी बर्मन की और बोल लिखे हैं गुलजार ने।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यही है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं परिंदा फिल्म का गीत, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में, आर डी बर्मन की संगीत रचना और शब्द रचना है खुर्शीद हलौरी की।

0: उम्मीद करते हैं पुराने गीतों का ये सुरीला सफ़र आपको पसंद आया होगा। इन्हीं मधुर यादों के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एफएम शिमला के साथ। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी और अंग्रेज़ी समाचार के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे

0: और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।